0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने?
3: My name is Reet Kaur Sahani, you're watching Eddie TV. We've got a whole lot lined up for you, but let's first take you through the headlines of the hour. Rahul Gandhi's swipe at Prime Minister Modi has triggered a sexism row after the reference to Italian Prime Minister Giorgia Meloni. The BJP has slammed the remarks as derogatory, while the Congress says Rahul did not name Meloni. Shiromani Akali Dal leader Sukhbir Singh Badal was attacked in Nanded after his visit to a Gurudwara. He's stable and undergoing surgery, while the attacker has been arrested and the motive is being investigated. The monsoon session has ended amid a bitter parliament deadlock and repeated disruptions. The opposition and the government traded blame, with several key debates and legislative business caught in the crossfire. The food safety crackdown has intensified in Bengaluru, with the FDA raiding hospital kitchens after inspecting 5-star hotels. Expired and stale food products were sealed, raising fresh concerns over food safety standards. Fresh and chilling details have emerged in the Renuka Swami murder case involving actor Darshan. Testimony from an accused has shed new light on the alleged assault and the events surrounding the crime. Rahul Gandhi has launched a sharp attack on the BJP and the RSS, calling the RSS an outdated force. The remarks have triggered a fierce BJP backlash, adding a fresh flashpoint to the political battle in Karnataka. Well, with some breaking news coming in from Uttarakhand, let's take you through it. We have some important updates coming in the Uttarakhand tunnel collapse, where as many as 7 people have been confirmed dead and 14 workers have been injured in the tunnel collapse. This is an incident coming to fore from Uttarakhand's Chamoli, where 20 workers were rescued from the tunnel. This is a tragedy, remember, that struck workers inside of Chamoli, inside the tunnel in Chamoli. Those are the visuals right there on your screens at the moment. 3 workers have reportedly been trapped inside the tunnel and still remain trapped as the operations to rescue them remain underway. We have some reactions lined up for you. Let's take you through them.
4: Sir, अभी हमारे पास जो TSDC है वहाँ से 19 लोग पहुँचे थे कुल मिला के, जिसमें से 7 लोग को मृत घोषित कर दिया गया है अस्पताल में, और 13 लोग अभी हमारे पास आए हैं जिनकी कंडीशन थोड़ा ठीक है। उसमें से 10 लोगों को हमने एडमिट किया है अपने पास। एक लड़के की थोड़ा सा कंडीशन अनस्टेबल होने के कारण बेस हॉस्पिटल श्रीनगर उसको रेफर किया था हमने।
5: दिक्कत है, लेकिन इस तरह से बचाव और राहत कार्य यहाँ पर हुआ है, उसके लिए मैं प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा। इस तरह से NDRF, SDRF, GDRF, CISF, CRPF, CRPF, स्थानीय पुलिस और नागरिक प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। यही वजह है कि अधिकतर लोगों को अभी तक निकाला जा चुका है।
3: Well, my colleague Kishore Rawat now joins us on the broadcast. Kishore, this is some devastating information that's coming to fore from Chamoli. We're learning as many as 14 workers were injured and 7 have even been confirmed dead. Walk us through the details. What is it looking like on ground zero?
6: देखिए, ये जो पीपल कोटे चमोली में एक जगह पड़ती है, वहाँ पर विष्णुघाट परियोजना के मायाकुंड वाला इलाका है जहाँ पर यह हादसा हुआ है टनल के अंदर से। वो टनल लगभग 3 किलोमीटर लंबी है और 1.8 किलोमीटर पर यह हादसा हुआ है टनल के अंदर। पानी और काफी ज्यादा मर्ड आने के कारण वहां पे पूरी टनल में आधे तक पानी भर गया था। लगभग ये बताया जा रहा है कि 22 इसमें जो लेबर्स थे वहां पर काम कर रहे थे, जिसमें 14 को रेस्क्यू कर लिया गया और 7 की डेथ हो गई है अकॉर्डिंग टू डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि 28 लोग थे, जिसमें जो SDRF के NDRF के कमांडेंट है उन्होंने कहा कि 28 लोग थे, 28 में से 6 लोग जो कंपनी के ही रेस्क्यूअर थे, तो ऐसे में अभी एक व्यक्ति लापता है जिसकी तलाश जारी है। 5 बजे सुबह फिर से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और उम्मीद है कि 1 घंटे में ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर 100 से ज्यादा उसमें इंडियन आर्मी के लोग हैं, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, डीडीआरएफ है, पुलिस है, फायर सर्विस है, इसके अलावा सीआरपीएफ के लोग हैं। तो तमाम जो वो ऑपरेशन लगातार कंटिन्यू चला रहे हैं, तो उसमें संभवतः सुबह 5 बजे जब ऑपरेशन शुरू किया तो उसमें अब ऑपरेशन लगभग 1 घंटा हो चुका है। तो एक व्यक्ति की अगर क्योंकि अगर डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक देखा जाए तो फिलहाल एक व्यक्ति अभी लापता है। जी
3: किशोर, there's also some sort of information that goes on to suggest that as many as 20 people were rescued, but I believe that there are some workers that are still trapped, as many as 3 workers. Help us understand what the situation is looking like on ground zero, and also help our viewers understand what exactly is triggering this tunnel collapse.
6: देखिए टनल, अभी अगर बात करें तो टनल अभी कोलैप्स नहीं हुई है। बेसिकली टनल के अंदर कहीं से काफी ज्यादा पानी और उसके साथ मड आ गया था। टनल क्लोज नहीं है, टनल खुली हुई है। जो यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है दो साइड से, यानी जो दूसरी साइड है ये, क्योंकि 3 किलोमीटर लंबी टनल है, तो दूसरी साइड जहाँ पर ये इसका दूसरी साइड है वहां से इसका पानी निकाला जा रहा है, और जहां से हम तस्वीरें देख रहे हैं वहां से टनल से में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पानी ज्यादा होने के कारण उसमें अंदर जाना काफी मुश्किल है। कई मशीनें जो है वो डूब गई थी, लेकिन पानी अब धीरे धीरे जैसे निकाला जा रहा है, और पानी क्योंकि अंधेरा और लाइट वहां पे कट ऑफ होने के कारण ऑपरेशन चलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब लाइट की व्यवस्था हो गई है। दूसरा, जो नंबर्स की बात करें, नंबर्स में कहीं ना कहीं थोड़ा अभी इसमें चीजें समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि 28 लोग ये जरूर बता रहे थे शाम को, 28 लोग वहां पर काम कर रहे थे जिसमें से 22 लोग फंस गए थे, 6 लोग उनको रेस्क्यू करने गए थे। तो कुल मिलाकर अभी फिलहाल जो अगर डिजास्टर मैनेजमेंट के यानी गवर्नमेंट के उसके मुताबिक देखा जाए तो फिलहाल 22 लोग थे, 22 में से 14 को रेस्क्यू कर लिया गया। नंबर जो डेथ है वो 7 है, यानी 21 पीपल्स को बाहर निकाला जा चुका है। बस एक व्यक्ति है जिसको तलाश जारी है और सुबह 5 बजे से ऑपरेशन शुरू हो गया।
3: ऑल राइट किशोर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड शेयरिंग दिस क्रूशियल अपडेट्स विद अस। Well, after his attack, Sukhbir Singh Badal is stable. After, remember, he was attacked with a dagger in Nanded yesterday. The Akali Dal chief was returning from a Gurudwara when the attack took place, leaving him with an injury to his right hand. He's undergone surgery and is now said to be stable. A police inspector who was accompanying Badal also sustained injuries. The attacker has been arrested, but the motive still remains unclear. Maharashtra Chief Minister and the Deputy Chief Minister have taken stock of the situation, and they've even inquired about Badal's health, assuring the family of thorough investigation in the case. Sources even go on to suggest that the Prime Minister has spoken to Sukhbir Badal's wife, Harsimrat Kaur Badal, over the phone and even inquired about his health. The Akali Dal, meanwhile, is demanding a CBI investigation, calling the incident a total intelligence failure and even demanding swift action in the case.
2: उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उनको पूरी कड़ी कार्रवाई करके ये सजा होनी चाहिए बड़ी। हाँ, अच्छा, नहीं नहीं, मैं अभी वहाँ के इसको IG SP सबको बोल देता हूँ मैं। हाँ, मैं बोल देता हूँ, DG को बोलता हूँ कि कोई भी नहीं छूटे इसमें।
7: जड़ी घटना वापरी हैगी, जड़ा एक निहंग सिंह ने सरदार सुखबीर सिंह उत्ते हमला किया है और उन्होंने बांह के नेजा मारिया है हाथ के गुट के उत्ते। यह बड़ी अफसोसनाक गल है, 2 साल के विच दो जगह के उत्ते यह हमले हुए हैं। एक दरबार साहब से जदों अकाल तख्त साहब के हुक्मनामे की बड़ी श्रद्धा से सत्कार नाल सेवा निभा रहे सन।
8: जो भी हमला हुआ है उस गुरुद्वारा में जो उनकी जो कमेटी है जिसने हमला किया है वो बंदा वहीं पर 2 साल से काम कर रहा था, और अभी उसने किस इंटेंशन से वो हमला किया है, क्यों हमला किया है, उसके सब इंक्वायरी हमने चालू की है और इंक्वायरी के बाद पता चलेगा।
9: कुछ इंक्वायरी कमेटी बिठाई है आपकी, कुछ बातचीत हुई है वहाँ के SP से?
8: कंसर्न जो IG है मेरे उनके साथ में बात हुई है, वहाँ के जो कलेक्टर है मेरे उनके साथ में भी बात हुई है, और ऑनरेबल सीएम सर ने भी इसमें इंक्वायरी शुरू करने के आदेश दिए हैं, कंसर्न एसपी को आदेश दिए हैं। और इसमें जो भी उनकी सिक्योरिटी जो जो कैटेगरी है वो कैटेगरी उनको प्रोवाइड की गई थी, जेड सिक्योरिटी उनको है तो जेड सिक्योरिटी उनको दी गई थी।
10: पॉलिटिकली आपकी जितनी मर्जी राइवलरी हो, लेकिन इस तरह का कोई भी एक्ट है कि वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और गुरुद्वारा साहिब के कैंपस में तो बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जा सकती। और मैं मांग करूंगा महाराष्ट्र सरकार इस पे थॉरली जांच करे, और जो भी लोग हैं ऐसे जिन्होंने इस तरह का हमला किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, और जो सुखबीर बादल जी हैं वो जल्दी सेहतयाब हों मैं उम्मीद करता हूँ।
11: बेहद अफसोस की बात है, कई बार इन पे हमला किया गया है और मैं समझता हूँ इसमें सिक्योरिटी की भी कमजोरी है, क्योंकि लोगों को याद रखना चाहिए और हुकूमतों को याद रखना चाहिए कि ये बहुत वल्नरेबल शख्सियतें हैं, और पहले भी हमला हुआ और निंदा करते हैं इसकी जो ये हुआ है, और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इनको सेहत बख्शे और जल्दी से ठीक हो जाए और मुल्क के लिए काम करें।
10: पॉलिटिकली आपकी जितनी मर्जी राइवलरी हो, लेकिन इस तरह का कोई भी एक्ट है कि वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और गुरुद्वारा साहिब के कैंपस में तो बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जा सकती। और मैं मांग करूंगा महाराष्ट्र सरकार इस पे थॉरली जांच करे, और जो भी लोग हैं ऐसे जिन्होंने इस तरह का हमला किया है उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो, और जो सुखबीर बादल जी हैं वो जल्दी सेहतयाब हों मैं उम्मीद करता हूँ।
12: ऑनरेबल डिप्टी सीएम नांदेड़ के टूर पे थे, उसमें माता साहेब मुगट का जो गुरुद्वारा है वहाँ से वो आते समय उनके ऊपर अटेम्प्ट किया उनको अटैक करने का, उसमें उनको माइनर इंजरी हुई है, जो स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का जो पीएसआई है उनको भी इंजरी हुई है। तो अभी दोनों की जो तबीयत है वो स्टेबल है, आउट ऑफ डेंजर है, एंड पुलिस ने उनको कस्टडी में लिया है, तो आगे का इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है।
13: सर कहाँ कहाँ लगा है, पुलिस अफसर को कहाँ लगा है और बादल जी को कहाँ लगा है?
12: दोनों को भी हाथ पे लगा है, उनको राइट फोर आर्म पे एक आई थिंक 4-5 सेंटीमीटर कुछ वाउंड है, तो उनका अभी डॉक्टर इलाज कर रहे हैं।
3: Let me take you through more updates coming in this case. Now, the man accused of attacking Sukhbir Singh Badal has been identified as 62-year-old Jaspal Singh, a Nihang and a Sevadar at the Nandir Gurudwara, who is currently in police custody. The Nandir SP says Jaspal had been working as a Sevadar at Nandir Gurudwara for the past 2 years. He holds a BCom and LLB degree, but the bigger question is what drove him to attack the Akali Dal chief. Sources say that during questioning, Jaspal reportedly expressed anger over the drug menace in Punjab, even blaming him for turning the state into Urta Punjab. Now the motive is still under investigation and cops are questioning Jaspal Singh for further details. Let's shift tracks and take you through more updates coming in. Now the Congress in the latest is facing a sexism storm after Rahul Gandhi and Sandeep Dixit screwed Melanie Jibe at a Delhi convention. The BJP has slammed the remarks as vulgar, accusing Congress leaders of targeting a foreign leader and risking India and Italy's ties. The exchange has triggered a fresh political row, with the BJP accusing the Congress leaders of making a vulgar reference to the Italian Prime Minister Giorgia Meloni. Now, the remarks have also renewed scrutiny of sexism within the party. The backlash is mounting, with leaders accusing Rahul Gandhi of indulging in locker room talk and using cheap innuendos. They say that the conduct is deteriorating, calling the remarks shameful and arrogant, while alleging that the Congress is disrespecting women and even risking India's foreign relations.
14: एक चीज पूछ सकता हूँ?
15: हाँ।
14: मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था?
15: I have not reached there yet.
14: एक चीज पूछ सकता हूँ?
15: हाँ।
14: मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था?
15: I have not reached there yet.
14: एक चीज पूछ सकता हूँ?
15: हाँ।
14: मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था?
15: I have not reached there yet.
3: Well, a staggering 7,023 minutes of the House time have been washed out. This amid the opposition protests and relentless face-off with the ruling benches. Time that costs the taxpayer about rupees 2.5 lakh every single minute, or about 1.5 crore for every hour the parliament is in session. The Lok Sabha's monsoon session has effectively turned into a washout, with the house functioning for just 17.5 hours, the lowest figure in the past 10 years. The Rajya Sabha has done marginally better, functioning for about 37.4 hours this monsoon session, again exposing the cost of continuing political confrontation. The deadlock, remember, between the centre and the opposition left many bills in limbo, including delimitation, FCRA, Women's Court, and even the Indian Statistical Institute bill. With that, we're stepping into a very short break. More news and updates on the other side. Stay on with us on the broadcast.

0: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
1: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशंस थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
2: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
3: पुशअप चैलेंज किया जाए? 28, 29, 30.
4: तंबी कैसे?

0: Lined up for you, but let's first take you through the headlines of the hour. Rahul Gandhi's swipe at Prime Minister Modi has triggered a sexism row after the reference to Italian Prime Minister Giorgia Meloni. The BJP has slammed the remarks as derogatory, while the Congress says Rahul did not name Meloni. Shiromani Akali Dal leader Sukhbir Singh Badal was attacked in Nanded after his visit to a Gurudwara. He is stable and undergoing surgery, while the attacker has been arrested and the motive is being investigated. The monsoon session has ended amid a bitter parliament deadlock and repeated disruptions. The opposition and the government traded blame, with several key debates and legislative business caught in the crossfire. The food safety crackdown has intensified in Bengaluru, with the FDA raiding hospital kitchens after inspecting five-star hotels. Expired and stale food products were sealed, raising fresh concerns over food safety standards. Fresh and chilling details have emerged in the Renuka Swami murder case involving actor Darshan. Testimony from an accused has shed new light on the alleged assault and the events surrounding the crime. Rahul Gandhi has launched a sharp attack on the BJP and the RSS, calling the RSS an outdated force. The remarks have triggered a fierce BJP backlash, adding a fresh flashpoint to the political battle in Karnataka. Well, with some breaking news coming in from Uttarakhand, let's take you through it. We have some important updates coming in the Uttarakhand tunnel collapse, where as many as 7 people have been confirmed dead and 14 workers have been injured in the tunnel collapse. This is an incident coming to fore from Uttarakhand's Chamoli, where 20 workers were rescued from the tunnel. This is a tragedy, remember, that struck workers inside of Chamoli, inside the tunnel in Chamoli. Those are the visuals right there on your screens at the moment. 3 workers have reportedly been trapped inside the tunnel and still remain trapped as the operations to rescue them remain underway. We have some reactions lined up for you. Let's take you through them.
1: Sir, अभी हमारे पास जो TSDC है वहाँ से 19 लोग पहुँचे थे कुल मिला के, जिसमें से 7 लोग को मृत घोषित कर दिया गया है अस्पताल में और 13 लोग अभी हमारे पास आए हैं जिनकी कंडीशन थोड़ा ठीक है. उसमें से 10 लोगों को हमने एडमिट किया है अपने पास. एक लड़के की थोड़ा सा कंडीशन अनस्टेबल होने के कारण बेस हॉस्पिटल श्रीनगर उसको रेफर किया था हमने.
2: दिक्कत है, लेकिन इस तरह से बचाव और राहत कार्य यहाँ पर हुआ है, उसके लिए मैं प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा. इस तरह से NDRF, SDRF, GDRF, CISF, CRPF, CRPF, स्थानीय पुलिस और नागरिक प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है. यही वजह है कि अधिकतर लोगों को अभी तक निकाला जा चुका है.
0: Well, my colleague Kishore Rawat now joins us on the broadcast. Kishore, this is some devastating information that's coming to fore from Chamoli. We're learning as many as 14 workers were injured and 7 have even been confirmed dead. Walk us through the details. What is it looking like on ground zero?
3: देखिए, ये जो पीपल कोटे चमोली में एक जगह पड़ती है, वहाँ पर विष्णुघाट परियोजना के मायाकुंड वाला इलाका है जहाँ पर यह हादसा हुआ है टनल के अंदर से. वो टनल लगभग 3 किलोमीटर लंबी है और 1.8 किलोमीटर पर यह हादसा हुआ है. टनल के अंदर पानी और काफी ज्यादा मड आने के कारण वहां पे पूरी टनल में आधे तक पानी भर गया था. लगभग ये बताया जा रहा है कि 22 इसमें जो लेबर्स थे वहां पर काम कर रहे थे, जिसमें 14 को रेस्क्यू कर लिया गया और 7 की डेथ हो गई है अकॉर्डिंग टू डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक. लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि 28 लोग थे, जिसमें जो SDRF के NDRF के कमांडेंट है उन्होंने कहा कि 28 लोग थे, 28 में से 6 लोग जो कंपनी के ही रेस्क्यूअर थे. तो ऐसे में अभी एक व्यक्ति लापता है जिसकी तलाश जारी है. 5 बजे सुबह फिर से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और उम्मीद है कि एक घंटे में ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर 100 से ज्यादा उसमें इंडियन आर्मी के लोग हैं, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, डीडीआरएफ है, पुलिस है, फायर सर्विस है, इसके अलावा सीआरपीएफ के लोग हैं। तो तमाम जो वो ऑपरेशन लगातार कंटिन्यू चला रहे हैं, तो उसमें संभवतः सुबह 5 बजे जब ऑपरेशन शुरू किया तो उसमें अब ऑपरेशन लगभग एक घंटा हो चुका है। तो एक व्यक्ति की अगर क्योंकि अगर डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक देखा जाए तो फिलहाल एक

0: और उसके साथ मर्ड आ गया था। टनल क्लोज नहीं है, टनल खुली हुई है, जो यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है दो साइड से, यानी जो दूसरी साइड है ये, क्योंकि 3 किलोमीटर लंबी टनल है, तो दूसरी साइड जहाँ पर ये इसका दूसरी साइड है वहां से इसका पानी निकाला जा रहा है, और जहां से हम तस्वीरें देख रहे हैं वहां से टनल से में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पानी ज्यादा होने के कारण उसमें अंदर जाना काफी मुश्किल है, कई मशीनें जो है वो डूब गई थी, लेकिन पानी अब धीरे धीरे जैसे निकाला जा रहा है, और पानी क्योंकि अंधेरा और लाइट वहां पे कट ऑफ होने के कारण ऑपरेशन चलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब लाइट की व्यवस्था हो गई है। दूसरा, जो नंबर्स की बात करें, नंबर्स में कहीं ना कहीं थोड़ा अभी इसमें चीजें समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि 28 लोग, ये जरूर बता रहे थे शाम को, 28 लोग वहां पर काम कर रहे थे जिसमें से 22 लोग फंस गए थे, 6 लोग उनको रेस्क्यू करने गए थे। तो कुल मिलाकर अभी फिलहाल जो अगर डिजास्टर मैनेजमेंट के यानी गवर्नमेंट के उसके मुताबिक देखा जाए तो फिलहाल 22 लोग थे, 22 में से 14 को रेस्क्यू कर लिया गया, नंबर जो डेथ है वो 7 है, यानी 21 पीपल्स को बाहर निकाला जा चुका है, बस एक व्यक्ति है जिसको तलाश जारी है, और सुबह 5 बजे से ऑपरेशन शुरू हो गया।
1: और किशोर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड शेयरिंग दिस क्रूशियल अपडेट्स विद अस। Well, after his attack, Sukhbir Singh Badal is stable. After, remember, he was attacked with a dagger in Nanded yesterday. The Akali Dal chief was returning from a Gurudwara when the attack took place, leaving him with an injury to his right hand. He's undergone surgery and is now said to be stable. A police inspector who was accompanying Badal also sustained injuries. The attacker has been arrested, but the motive still remains unclear. Maharashtra Chief Minister and the Deputy Chief Minister have taken stock of the situation, and they've even inquired about Badal's health, assuring the family of thorough investigation in the case. Sources even go on to suggest that the Prime Minister has spoken to Sukhbir Badal's wife, Harsimrat Kaur Badal, over the phone and even inquired about his health. The Akali Dal, meanwhile, is demanding a CBI investigation, calling the incident a total intelligence failure and even demanding swift action in the case.
2: उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उनको पूरी कड़ी कार्रवाई करके ये सजा होनी चाहिए बड़ी। हाँ, अच्छा, नहीं नहीं, मैं अभी वहाँ के इसको IG SP सबको बोल देता हूँ मैं। हाँ, मैं बोल देता हूँ, DG को बोलता हूँ कि कोई भी नहीं छूटे इसमें।
3: जड़ी घटना वापरी हैगी, जड़ा एक निहंग सिंह ने सरदार सुखबीर सिंह उत्ते हमला किया है, और उन्होंने बांह दे विच नेजा मारिया है, हाथ दे गोड़ दे उत्ते, ये बड़ी अफसोसनाक गल है। 2 साल दे विच 2 जगह दे उत्ते ये हमले होए हैं, एक दरबार साहब ते जदों अकाल तख्त साहब दे हुक्मनामे की बड़ी श्रद्धा ते सत्कार नाल सेवा निभा रहे सन।
4: जो भी हमला हुआ है उस गुरुद्वारा में जो उनकी जो कमेटी है जिसने हमला किया है वो बंदा वहीं पर 2 साल से काम कर रहा था, और अभी उसने किस इंटेंशन से वो हमला किया है, क्यों हमला किया है, उसके सब इंक्वायरी हमने चालू की है, और इंक्वायरी के बाद पता चलेगा।
5: कुछ इंक्वायरी कमेटी बिठाई है आपकी, कुछ बातचीत हुई है वहाँ के SP से?
4: कंसर्न जो IG है मेरे, उनके साथ में बात हुई है, वहाँ के जो कलेक्टर है मेरे, उनके साथ में भी बात हुई है, और ऑनरेबल CM सर ने भी इसमें इंक्वायरी शुरू करने के आदेश दिए हैं, कंसर्न SP को आदेश दिए हैं, और इसमें जो भी उनकी सिक्योरिटी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी उनको प्रोवाइड की गई थी, जेड सिक्योरिटी उनको है तो जेड सिक्योरिटी उनको दी गई थी।
6: पॉलिटिकली आपकी जितनी मर्जी राइवलरी हो, लेकिन इस तरह का कोई भी एक्ट है कि वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और गुरुद्वारा साहिब के कैंपस में तो बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जा सकती, और मैं मांग करूंगा महाराष्ट्र सरकार इस पे थॉरली जांच करे, और जो भी लोग हैं ऐसे जिन्होंने इस तरह का हमला किया है उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो, और जो सुखबीर बादल जी हैं वो जल्दी सेहतयाब हों मैं उम्मीद करता हूं।
7: बेहद अफसोस की बात है, कई बार इन पे हमला किया गया है, और मैं समझता हूं इसमें सिक्योरिटी की भी कमजोरी है, क्योंकि लोगों को याद रखना चाहिए और हुकूमतों को याद रखना चाहिए

0: कि ये बहुत वल्नरेबल शख्सियतें हैं और पहले भी हमला हुआ और निंदा करते हैं इसकी जो ये हुआ है, और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इनको सेहत बख्शे और जल्दी से ठीक हो जाए और मुल्क के लिए काम करें।
1: पॉलिटिकली आपकी जितनी मर्जी राइवलरी हो, लेकिन इस तरह का कोई भी एक्ट है कि वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और गुरुद्वारा साहिब के कैंपस में तो बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जा सकती। और मैं मांग करूंगा महाराष्ट्र सरकार इस पे थॉरली जांच करे, और जो भी लोग हैं ऐसे जिन्होंने इस तरह का हमला किया है उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो, और जो सुखबीर बादल जी हैं वो जल्दी सेहतयाब हों मैं उम्मीद करता हूँ।
2: ऑनरेबल डिप्टी सीएम नांदेड़ के टूर पे थे, उसमें माता साहेब मुगट का जो गुरुद्वारा है वहाँ से वो आते समय उनके ऊपर अटेम्प्ट किया उनको अटैक करने का, उसमें उनको माइनर इंजरी हुई है। जो स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का जो पीएसआई है उनको भी इंजरी हुई है। तो अभी दोनों की जो तबीयत है वो स्टेबल है, आउट ऑफ डेंजर है, एंड पुलिस ने उनको कस्टडी में लिया है, तो आगे का इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है।
3: कहाँ कहाँ लगा है, पुलिस अफसर को कहाँ लगा है और बादल जी को कहाँ लगा है?
2: दोनों को भी हाथ पे लगा है, उनको राइट फोर आर्म पे एक आई थिंक 4-5 सेंटीमीटर कुछ वाउंड है, तो उनका अभी डॉक्टर इलाज कर रहे हैं।
4: LPT gets some more updates coming in this case. Now, the man accused of attacking Sukhbir Singh Badal has been identified as 62-year-old Jaspal Singh, a Nihang and a Sevadar at the Nandir Gurudwara, who is currently in police custody. The Nandir SP says Jaspal had been working as a Sevadar at Nandir Gurudwara for the past 2 years. He holds a BCom and LLB degree, but the bigger question is what drove him to attack the Akali Dal chief. Sources say that during questioning, Jaspal reportedly expressed anger over the drug menace in Punjab, even blaming him for turning the state into Urta Punjab. Now the motive is still under investigation and cops are questioning Jaspal Singh for further details. Let's shift tracks and take you through more updates coming in. Now the Congress in the latest is facing a sexism storm after Rahul Gandhi and Sandeep Dixit screwed Melanie Jibe at a Delhi convention. The BJP has slammed the remarks as vulgar, accusing Congress leaders of targeting a foreign leader and risking India and Italy's ties. The exchange has triggered a fresh political row, with the BJP accusing the Congress leaders of making a vulgar reference to the Italian Prime Minister Giorgia Meloni. Now, the remarks have also renewed scrutiny of sexism within the party. The backlash is mounting, with leaders accusing Rahul Gandhi of indulging in locker room talk and using cheap innuendos. They say that the conduct is deteriorating, calling the remarks shameful and arrogant, while alleging that the Congress is disrespecting women and even risking India's foreign relations.
5: एक चीज पूछ सकता हूँ? मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था?
6: I have not reached there yet.
5: एक चीज पूछ सकता हूँ? मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था?
6: I have not reached there yet.
5: एक चीज पूछ सकता हूँ? मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था?
6: I have not reached there yet.
4: Well, a staggering 7,023 minutes of the House time have been washed out. This amid the opposition protests and relentless face-off with the ruling benches. Time that costs the taxpayer about rupees 2.5 lakh every single minute, or about 1.5 crore for every hour the parliament is in session. The Lok Sabha's monsoon session has effectively turned into a washout, with the House functioning for just 17.5 hours, the lowest figure in the past 10 years. The Rajya Sabha has done marginally better, functioning for about 37.4 hours this monsoon session, again exposing the cost of continuing political confrontation. The deadlock, remember, between the centre and the opposition left many bills in limbo, including delimitation, FCRA, Women's Court, and even the Indian Statistical Institute bill. With that, we're stepping into a very short break. More news and updates on the other side. Stay on with us on the broadcast.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
1: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशन थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
2: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
3: पुशअप चैलेंज किया जाए, 28, 29, 30।
4: तंबे कैसे? टाइगर कैसे?
5: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape

0: Well, there's some breaking news coming in from Uttarakhand. Let's take you through it. An important update coming in the Uttarakhand tunnel collapse, as 7 people have now been confirmed dead. 14 workers have been injured in a tunnel collapse, and 20 workers have been rescued from the tunnel. The tragedy strikes workers inside the Chamoli tunnel. 3 workers have reportedly still been trapped inside the tunnel. Crucial developments now taking shape and coming to the fore from Uttarakhand's Chamoli, where as many as 7 people have now passed. 14 workers have now been injured in a tunnel collapse, and 20 workers have been rescued from the tunnel. The tragedy, remember, has in fact struck workers inside the Chamoli tunnel. 3 workers are reportedly still trapped inside the tunnel.
1: सर, अभी हमारे पास जो TSDC है वहाँ से 19 लोग पहुँचे थे कुल मिला के, जिसमें से 7 लोग को मृत घोषित कर दिया गया है अस्पताल में, और 13 लोग अभी हमारे पास आए हैं जिनकी कंडीशन थोड़ा ठीक है। उसमें से 10 लोगों को हमने एडमिट किया अपने पास। एक लड़के की थोड़ा सा कंडीशन अनस्टेबल होने के कारण बेस हॉस्पिटल श्रीनगर उसको रेफ़र किया था हमने।
2: लेकिन इस तरह से बचाव और राहत कार्य यहाँ पर हुआ है, उसके लिए मैं प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा। इस तरह से NDRF, SDRF, GDRF, CISF, CRPF, CRPF, स्थानीय पुलिस और नागरिक प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। यही वजह है कि अधिकतर लोगों को अभी तक निकाला जा चुका है।
3: अभी जो अंदर सिचुएशन है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण जो है सिचुएशन थोड़ा सा टफ हो रही है, तो NDRF प्लस SDRF भी उसमें लगी हुई है। तो NDRF के ज़्यादातर जो जवान है वो अपना जो भी इक्विपमेंट है उसका यूज़ करके, जितना उसका यूज़ करके जो है कार्रवाई कर रहे हैं, और उसके अनुसार अभी तक जो हमारे पास जो स्ट्रेंथ है, तो 28 में से जो 6 रेस्क्यूअर तो बचे 22 में से 18 लोग हम बाहर निकाल चुके हैं अभी, ठीक है, 18 लोग बाहर निकाल चुके हैं। जो 4 लोग हैं उसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो हो सकता है हमें बोट की भी ज़रूरत पड़े, तो हम बोट भी हम अंदर अभी जो है डिप्लॉय करेंगे।
0: माय कॉलीग नाउ सुरेंद्र रावत जॉइंस अस फ्रॉम द ब्रॉडकास्ट। सुरेंद्र, आप हमें ये बताइए कि वहाँ पे इस समय पे क्या हो रहा है? ये भी हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 3 लोग अभी भी ट्रैप्ड हैं।
4: हाँ बिल्कुल, क्योंकि देर शाम से लगातार जब ये घटना हुई उसके बाद से जिला प्रशासन की ओर से SDRF, NDRF, पुलिस फोर्स, आर्मी, सारे पूरी फोर्स यहाँ पे इस रेस्क्यू में लगी हुई थी, और उसके चलते ही अब तक लगभग जो टोटल जो 28 यहाँ पे मजदूर के बात कही गई थी, उसमें से जो रेस्क्यू हुए हैं उनमें से 7 लोगों की डेथ बताई जा रही है, और जो घायल हैं उनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। इस समय की अगर हम बात करें तो इस समय भी NDRF और ITB की लगातार इस रेस्क्यू में लगी हुई है। जिला प्रशासन की ओर से लगातार सभी जो टीमें हैं वो मौके पे हैं, और हर संभव प्रयास ये किया जा रहा है कि जो 3 अन्य लोग अभी भी फंसे हुए हैं उनको समय से निकाला जा सके।
0: जी सुरेंद्र, आप हमें अगर थोड़ा दिखा सके और बता सके कि इस जो ये इंसिडेंट हुआ है इसके पीछे कारण क्या है, और अभी जो सिचुएशन है ग्राउंड जीरो पे वो कैसी दिख रही है?
4: हाँ बिल्कुल, हम ये आप लोग देख सकते हैं, मैं उसी टनल पे खड़ा हूँ, ये वही टनल है। लगभग ये बताया जा रहा है कि जो घटना हुई है वो 1600 मीटर लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास ये घटना हुई थी, और एक जो टनल के अंदर अचानक से जो मलबे के रूप में, दलदल के रूप में, बहुत भारी मात्रा में दलदल आ गया था, और उस दौरान जो काम कर रहे मजदूर थे वो पूरे उसकी चपेट में आ गए थे। जो कुछ मजदूर जो सुरक्षित बचे हैं वो पानी के बहाव में टनल से बाहर निकल गए थे, और इसके चलते वो बच पाए हैं, और जो अन्य थे वो दलदल में फंस गए थे। उसके बाद जब रेस्क्यू हुआ तो उसके जो टेक्निकल जो यहाँ पे कंपनी प्रबंधन के जो लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो ये टनल है, इस तरह की जो टनल होती है उसमें ऑक्सीजन की कोई भी अतिरिक्त व्यवस्थाएं नहीं करनी पड़ती हैं, और सब चीज़ सामान्य था। लेकिन ये घटना अचानक से हुई है, और कहीं भी किसी को समझ नहीं आया कि किस तरह से इतने सारे जो मजदूर हैं वो अचानक उनके सामने जिंदगी और मौत की जो स्थिति थी वो सामने आ गई है। लेकिन अभी तक इसमें अब प्रशासन की ओर से जांच की बात कही जा रही है, लेकिन प्राथमिकता के तौर पे जो यहाँ पे मजदूर फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है।

0: जी बिल्कुल, एंड वी कैन ऑल्सो सी इन माई कॉलेज सुरेंद्र स्ट्रीम एज हाउ यू नो ऑफिशियल्स आर नाउ कमिंग टू द स्पॉट टू इंश्योर दैट द रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस टेक प्लेस स्मूथली. थैंक यू सो मच सुरेंद्र फॉर जॉइनिंग अस एंड शेयरिंग दोस क्रूशियल अपडेट्स विद अस. Let's take you through some more breaking news coming in at this hour. Now on the political front, Rahul Gandhi in the latest has slammed the Prime Minister's foreign policy. Rahul Gandhi, remember that the leader of opposition of the Lok Sabha, has now mocked the Prime Minister for hugging world leaders, saying that for Modi, hugging is a foreign policy. The BJP, remember, has gone all guns blazing on this against Rahul Gandhi. They've even gone on to say that foreign policy was worst under Jawaharlal Nehru. An important and scathing comment coming in from the BJP, where they've hit out at Jawaharlal Nehru, the former Prime Minister of the country, saying that foreign policy was the worst under him. This, remember, follows a comment from Rahul Gandhi that goes on to say that Prime Minister Modi's foreign policy is about hugging world leaders. This has evoked an important reaction coming in from the Bharatiya Janata Party.
1: Inke mind mein ghus gaya ki foreign policy is this. अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी.
2: एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ. मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था?
3: जो आदमी मानसिक दिवालिएपन में हो, राहुल गांधी उसी श्रेणी में आते हैं. उन्हें संसद के बदले आगरा जैसे संस्थान में रहना चाहिए. और जिसका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, नीचता की हद है. और राहुल गांधी आज लगभग, मैं तो पहली बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी आधा फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे से झलकता है, वो पागल हो चुके हैं.
4: राहुल गांधी शेमलेस स्टंट एंड द वल्गर इंसिनुएशंस अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी फॉरेन पॉलिसी only reflect the third rate filthy politics of Rahul Gandhi. Rahul Gandhi's crude and uncivilized antics expose the debased and twisted mindset of the Congress party and the Congress leadership. If Rahul Gandhi wants to talk about foreign policy, let him first talk about Nehru's tenure as foreign minister for 17 years, which was riddled and hyphenated with fiasco and failure. Rahul Gandhi for a long time now has polluted the political discourse and plummeted it to the lowest of lows with this foul rhetoric. And this is the reason, the uncultured, uncivilized, indignified politics of Rahul Gandhi is the reason why our people repeatedly rejected Rahul Gandhi.
5: ये राहुल गांधी जी को हार का जो desperation है, हताशा भाव, हताशा निराशा भाव, ये स्पष्ट रूप से राहुल गांधी में देखने के लिए मिल रहा है. पूरा डेस्परेट हो गया है. ये डेस्परेशन उनका वर्तव्य में दिख रहा है. चुने हुए प्रधानमंत्री है और जैसे राहुल गांधी और उनके फैमिली है, कोई हायरार्की में नहीं आए, फैमिली के कारण नहीं आया है, वंशवाद के कारण नहीं आया है. प्रधानमंत्री अपने स्वयं के परिश्रम और पार्टी के परिश्रम के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार वो चुनाव चुने हुए प्रधानमंत्री है.
0: Well, my colleague Ishika Varma now joins us on the broadcast to bring us the details. Ishika, Congress's Rahul Gandhi as well as Sandeep Dixit are receiving immense amount of backlash from the BJP regarding their foreign policy remarks. Walk us through the politics the situation is creating and where exactly was it that these remarks were made?
6: Well, Reet, as you rightly mentioned, you know, yesterday's Congress event has now turned into a big controversy now because, you know, we did see how Rahul Gandhi, in fact, took a swipe at, in fact, the government's foreign policy. In fact, at that, you know, at that

0: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है
1: कुछ इससे भी अनोखा
0: कमला पसंद, सिर्फ एक एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: इलेक्ट्रिसिटी बिल paid.
5: Really?
4: Your mobile recharge is done.
5: How?
4: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to rupees 300 every month. Use Bheem app to pay.
5: It's the Mahi way.
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।

0: Launch control, 0 to 100.
1: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move. This car makes no sense, yet it makes every sense. What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi. Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
2: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
3: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
4: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगाकर शिकार करते हैं।
5: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशंस थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
6: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
7: पुशअप चैलेंज किया जाए? 28, 29, 30.
8: तंबी कैसे? टाइगर कैसे?
2: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज़।

0: जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमैन बनना नहीं आसान है।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
2: रियली
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन,
2: हाउ
1: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ, यूज भीम ऐप टू पे,
2: इट्स द माही वे।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा,
6: सबका राजा आर प्योर मसाला।
7: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
8: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
9: हरियाणा।
8: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
9: डेढ़ महीने पे।
8: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
9: 3 साल।
8: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
9: बहुत।
8: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
9: श्रीनगर तक अलाउड।
8: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
7: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल यू नो।

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है
1: कुछ इससे भी अनोखा।
0: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: इलेक्ट्रिसिटी बिल paid.
5: Really?
4: Your mobile recharge is done.
5: How?
4: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cash back of up to rupees 300 every month. Use Bheem app to pay.
5: It's the Mahi way.
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा,
8: सबका राजा आर्थर मसाला।
9: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
10: Really?
9: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी।

0: जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
2: रियली
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन,
2: हाउ
1: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ, यूज भीम ऐप टू पे,
2: इट्स द माही वे।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा,
6: सबका राजा आर प्योर मसाला।
7: The news, Ayush. Since when do we do scripts? Fair point. Picture this. The biggest stage. Floodlights.
8: Wow.
7: 4K. The works.
8: Where's the hook?
7: There's going to be celebrities and guaranteed eyeballs.
8: Where's the hook?
7: Think about this. Front page advertisements and hoardings.
8: Bro, where's the hook?
7: Cross-platform, digital first, virality.
8: Without a hook, no way. The message is clear. It's 2026. You got to be real in a world of reels. You got to be original in a world where everything seems generated.
7: That's it. That's what we're looking for.
8: The best campaigns.
7: The hottest trends.
8: The smartest brand moves on our new show.
7: But wait, what do we call it?

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
2: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: दिस इज द शो वेयर वी ब्रिंग यू ऑल द हॉट एंड हैपनिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड लाइफस्टाइल।
4: रियली
3: फैशन दैट मेड यू गैग, फिल्म्स दैट मेड यू फैन गर्ल, आर्ट दैट मेड इट टू द ग्राम एंड ट्रेंड्स दैट केप्ट अस विद द प्रोग्राम। Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुमा केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
2: रियली
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: How?
1: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
2: It's the Mahi way.
3: Hindustan mile, Hindustan se.
4: Desh ka tire, JK tire.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।

रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
2: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: दिस इज द शो वेयर वी ब्रिंग यू ऑल द हॉट एंड हैपनिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड लाइफस्टाइल।
4: रियली
3: फैशन दैट मेड यू गैग, फिल्म्स दैट मेड यू फैन गर्ल, आर्ट दैट मेड इट टू द ग्राम एंड ट्रेंड्स दैट केप्ट अस विद द प्रोग्राम। Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
2: रियली?
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: हाउ?
1: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
2: इट्स द माही वे।

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है और बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
2: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज़।

0: आई थिंक 4-5 सेंटीमीटर कुछ वाउंड है, तो उनका अभी डॉक्टर इलाज कर रहे हैं।
1: All right, you know, the man accused of attacking Sukhbir Singh Badal has been identified as a 62-year-old. His name is Jaspal Singh. He's a sevadar at the Nanded Gurdwara and is in police custody as we speak. He told police officials he became a Nihang a few years ago. In fact, the SP Nanded says that Jaspal had been working as a sevadar at the Gurdwara for the past 2 years. He holds a BCom and LLB degree. But the bigger question, of course, is what drove him to attack the Akali Dal chief? Sources are telling NDTV that during questioning, Jaspal Singh, he reportedly expressed his anger against Sukhbir Singh Badal and his entire team over their drug menace in Punjab, even blaming him for turning the state into Urta Punjab. The motive is still under consideration and investigation as police officials are questioning Jaspal Singh for further details.
2: लगभग 2 बजे के आसपास साहब जो है माता साहब गुरुद्वारा विजिट पे गए थे, तो गुरुद्वारा विजिट करने के बाद वहाँ से वापस आते वक्त सीढ़िया के पास एक वहाँ का सेवादार है, उसने अचानक से आके अपने कृपाण से अटैक करने की कोशिश की, जिसमें हमारा एक साहब को राइट हैंड में इंजरी हुई है। ये होते ही हमने इमिडिएटली उस जो अटैकर था उसको अपने कस्टडी में ले लिया और उससे इंट्रोगेशन चल रही है। वो लगभग 62 साल का उम्र का है और लगभग 2 साल से यहाँ पे सेवादार काम कर रहा था गुरुद्वारे में।
1: As always, the news and updates continue right here on the NDTV network. We're slipping into a quick break. Back in a moment.

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: कौन?
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल यू नो।
3: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
4: Launch control, 0 to 100.
5: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
6: This car makes no sense, yet it makes every sense.
7: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
8: Your friend said, ye le le. We said, maybe not.
9: Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.

0: Gandhi's convocation at Nalsar. Now, the BCI had sought a report on those who organized the campaign, saying disrespect for the highest judicial office raised questions about suitability for the legal profession. But the council has now said that all 2026 graduates can seek enrollment with the State Bar Council of their choice. The fact-finding inquiry, however, will continue. The BCI chairperson, Manan Mishra, spoke to us. He admitted it was a hasty order before they withdrew it. Listen in to what he told my colleague Ishika.
1: We have seen that there is a backlash now, first of all, that the BCI is facing. सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्यों विड्रॉ करना पड़ा सर या फिर क्यों मॉडिफाई करना पड़ा इस पर्टिकुलर ऑर्डर?
2: नहीं देखिए एक हेस्टी ऑर्डर था लेकिन पर्पस उस ऑर्डर का द ओनली पर्पस वाज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट स्टूडेंट्स. होता क्या है कि जुडिशियरी से कोई क्लैश अगर लॉ स्टूडेंट्स को हो गया तो लॉ स्टूडेंट सफ़र करते हैं. पहले 5 दिन का इंटर्नशिप दे वेर अलाउड टू इंटर इन टू सुप्रीम कोर्ट कैंपस एंड डू इंटर्नशिप फॉर 5 डेज. नाउ दैट हैज बीन लिमिटेड टू 2 डेज ओनली. तो ये छात्रों के इंटरेस्ट के खिलाफ था. 5 दिन में वो कुछ सीखने का उनको मौका मिलता है. इंटर्नशिप एक लिमिटेड पीरियड के लिए द कॉलेज अलाउज द इंटर्नशिप फॉर ए लिमिटेड पीरियड. तो पर्पस ये था कि छात्रों का इंटरेस्ट का कहीं क्लैश ना हो, छात्रों से जुडिशरी को कोई क्लैश ना हो. तो इसलिए देखिए जैसे ही हमारे काउंसिल ने रियलाइज किया इस बात को कि छात्रों पर इंक्वायरी या कोई पनिशमेंट का कोई मतलब नहीं है, हम लोगों ने भी सब बैठ के हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं इसको आप हम विड्रॉ करते हैं. देयर विल बी नो क्वेश्चन ऑफ एनी इंक्वायरी और एनी पनिशमेंट और कहीं कुछ नहीं. तुरंत वो ऑर्डर विद इन 40 मिनट्स जो है वो मॉडिफाई हुआ ऑर्डर. और रात में फिर आफ्टर थॉरो डिस्कशन एंड डिलीबरेशंस वी हैव क्लोज दिस चैप्टर फुल्ली. नाउ देयर विल बी नो क्वेश्चन ऑफ एनी इंक्वायरी एनीथिंग. हम छात्रों के भविष्य के लिए फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स वी वांट दैट देयर शुड बी अ कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन द जुडिशियरी एंड द लॉ स्टूडेंट्स. तो उस पर्पस से हम काम कर रहे हैं. अगर कहीं कम्युनिकेशन कोई गैप हो गया या हमको ये चीज़ एक्सप्लेन करने में कहीं कोई कमी रह गई तो वो अलग बात है. लेकिन पर्पस हमारे बार काउंसिल का या हमारा यही है कि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को कहीं कोई दिक्कत ना पहुँचे, आघात ना पहुँचे, उनका अपना राइट जो कहते हो बना रहे.
1: सर यहाँ पर जब आप लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया तो कुछ ऐसा भी निकल के आया कि आउटसाइडर्स इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे थे बच्चों को?
2: अब तो मैंने चैप्टर ही वो इंक्वायरी का चैप्टर ही क्लोज कर दिया. अब सब ने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो बात आई गई ख़त्म हो गई. तो अब किसका इन्वॉल्वमेंट था किसका इन्वॉल्वमेंट नहीं था उसमें जाने का कोई मतलब अब नहीं है
1: सर. लेकिन ये जो विड्रॉ हुआ, पहले आया ऑर्डर और उसके बाद विड्रॉ हुआ, उसके बाद अब ऑपोजिशन काफ़ी ज़्यादा हमलावर हो गया है. असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने अब ये कहा है कि ये तो एक टैक्टिक हो गया है बच्चों के फ्यूचर को थ्रेटन करना और इससे जो है उनकी जो फ्री थिंकिंग है उस पर आप बैन लगाने की कोशिश कर रहे हैं. उस पर क्या कहेंगे?
2: बैन लगा तो नहीं, ना कोई बैन लगा, ना कोई इंक्वायरी हुई, ना उनको कोई दिक्कत हुआ. बल्कि हम उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए हमने कामना की, हमने विश किया. तो अब इस पर राजनीति करने लगे ओवैसी जी या कोई पॉलिटिकल पार्टी तो अब उसकी बात अलग है. लेकिन फैक्ट ये है कि एवरीथिंग हैज बीन क्लोज्ड, दैट चैप्टर स्टैंड्स क्लोज्ड नाउ कम्प्लीटली. तो अब ऐसी स्थिति में फिर ये राजनीति करना, अब यूपी में चुनाव है, कई जगह चुनाव है, उसको देख के ओवैसी जी कोई स्टेटमेंट दें, कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग स्टेटमेंट दें तो वो अलग बात है. लेकिन फैक्ट ये है कि फॉर बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड फॉर मनन मिश्रा द इंटरेस्ट राइट एंड प्रिविलेजेज एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दैट इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस.
1: लेकिन कुछ ऑपोजिशन पार्टीज तो आपके शुरुआत के जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उस पर भी सवाल खड़ा कर रहे थे कि बीसीआई कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकती है कुछ.
2: नहीं देखिए, अब तो मैंने कहा कि चूंकि वो चैप्टर क्लोज्ड है तो कहाँ से राइट आता है, कहाँ से क्या बनता है, अब उस पर डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है, चूंकि

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।

0: but I'm going to come back to you. It's going to be very interesting to see what the explanation is. NDTV spoke with the BCI chairman, Mr. Manan Kumar Mishra. Listen in to what he had to say.
1: We have seen that there is a backlash now, first of all, that the BCI is facing. सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्यों विड्रॉ करना पड़ा सर, या फिर क्यों मॉडिफाई करना पड़ा इस पर्टिकुलर ऑर्डर?
2: नहीं, देखिए, एक हेस्टी ऑर्डर था, लेकिन पर्पस उस ऑर्डर का, द ओनली पर्पस वाज दैट वाज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. होता क्या है कि जुडिशरी से कोई क्लैश अगर लॉ स्टूडेंट्स को हो गया तो लॉ स्टूडेंट्स सफ़र करते हैं. पहले 5 दिन का इंटर्नशिप, दे वेर अलाउड टू इंटर इन टू सुप्रीम कोर्ट कैंपस एंड डू इंटर्नशिप फॉर 5 डेज. नाउ दैट हैज बीन लिमिटेड टू 2 डेज ओनली. तो ये छात्रों के इंटरेस्ट के खिलाफ था. 5 दिन में वो कुछ सीखने का उनको मौका मिलता है. इंटर्नशिप एक लिमिटेड पीरियड के लिए, द कॉलेज अलाउज द इंटर्नशिप फॉर ए लिमिटेड पीरियड. तो पर्पस ये था कि छात्रों का इंटरेस्ट का कहीं क्लैश ना हो, छात्रों से जुडिशरी को कोई क्लैश ना हो. तो इसलिए देखिए, जैसे ही हमारे काउंसिल ने रियलाइज किया इस बात को कि छात्रों पर इंक्वायरी या कोई पनिशमेंट का कोई मतलब नहीं है, हम लोगों ने भी सब बैठ के हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, इसको आप हम विड्रॉ करते हैं, देयर विल बी नो क्वेश्चन ऑफ एनी इंक्वायरी और एनी पनिशमेंट और कहीं कुछ नहीं. तुरंत वो ऑर्डर विद इन 40 मिनट्स जो है वो मॉडिफाई हुआ ऑर्डर, और रात में फिर आफ्टर थोरो डिस्कशन एंड डिलीबरेशंस वी हैव क्लोज दिस चैप्टर फुल्ली. नाउ देर विल बी नो क्वेश्चन ऑफ एनी इंक्वायरी एनीथिंग. हम छात्रों के भविष्य के लिए, फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स, वी वांट दैट देयर शुड बी ए कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन द जुडिशरी एंड द लॉ स्टूडेंट्स. तो उस पर्पस से हम काम कर रहे हैं. अगर कहीं कम्युनिकेशन कोई गैप हो गया या हमको ये चीज़ एक्सप्लेन करने में कहीं कोई कमी रह गई तो वो अलग बात है, लेकिन पर्पस हमारे बार काउंसिल का या हमारा यही है कि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को कहीं कोई दिक्कत ना पहुँचे, आघात ना पहुँचे, उनका अपना राइट जो कहते हो बना रहे.
1: सर, यहाँ पर जब आप लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया तो कुछ ऐसा भी निकल के आया कि आउटसाइडर्स इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे थे?
2: अब तो मैंने चैप्टर ही, वो इंक्वायरी का चैप्टर ही क्लोज कर दिया. अब सब ने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो बात आई गई ख़त्म हो गई. तो अब किसका इन्वॉल्वमेंट था, किसका इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उसमें जाने का कोई मतलब अब नहीं है.
1: सर, लेकिन ये जो विड्रॉ हुआ, पहले आया ऑर्डर और उसके बाद विड्रॉ हुआ, उसके बाद अब ऑपोजिशन काफ़ी ज़्यादा हमलावर हो गया है. असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने अब ये कहा है कि ये तो एक टैक्टिक हो गया है बच्चों के फ्यूचर को थ्रेटन करना, और इससे जो है उनकी जो फ्री थिंकिंग है उस पर आप बैन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे?
2: बैन लगा तो नहीं, ना कोई बैन लगा, ना कोई इंक्वायरी हुई, ना उनको कोई दिक्कत हुआ, बल्कि हम उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए हमने कामना की, हमने विश किया. तो अब इस पर राजनीति करने लगे ओवैसी जी या कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो अब उसकी बात अलग है. लेकिन फैक्ट ये है कि एवरीथिंग हैज़ बीन क्लोज्ड, दैट चैप्टर स्टैंड्स क्लोज्ड नाउ कम्प्लीटली. तो अब ऐसी स्थिति में फिर ये राजनीति करना, अब यूपी में चुनाव है, कई जगह चुनाव है, उसको देख के ओवैसी जी कोई स्टेटमेंट दें, कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग स्टेटमेंट दें, तो वो अलग बात है. लेकिन फैक्ट ये है कि फॉर बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड फॉर मनन मिश्रा, द इंटरेस्ट राइट एंड प्रिविलेजेज एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, दैट इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस.
1: लेकिन कुछ ऑपोजिशन पार्टीज तो आपकी शुरुआत के जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उस पर भी सवाल खड़ा कर रहे थे कि बीसीआई कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकती है कुछ.
2: नहीं, देखिए, अब तो मैंने कहा कि चूंकि वो चैप्टर क्लोज्ड है, तो कहाँ से राइट आता है, कहाँ से क्या बनता है, अब उस पर डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है. चूंकि दैट चैप्टर स्टैंड्स क्लोज्ड कम्प्लीटली, तो उस पर अब कोई डिस्कशन करना कि कहाँ से बीसीआई को राइट आता है, क्या नहीं आता है, उसको छोड़ दीजिए.
3: BCI chairman is behaving like the BCI is his personal

0: property. When he issues an order or issues a letter or issues a direction, he does not even refer to under which provision of the act or the regulation he is making such kind of an order. BCI doesn't have some overarching power as if he's the Shahenshah of the advocacy regulation in this country. He is merely a statutory body. I don't know how he is continuing for more than 12 years. Even President of Supreme Court Bar can do only 4 terms, that is 4 years, but he has continued for more than 12 years. But obviously, the reason is quite obvious because this 12 years has given him the Rajya Sabha seat also.
1: Students of Nalsar are being misguided and misled by certain elements in opposing the CJS visit to Nalsar convocation. I myself was member of Academic Council and governing body member of the Nalsar University. Nalsar University is controlled by BCI and also the judiciary. The Chief Justice of Telangana is the Chancellor of Nalsar University, and CJI is also one of the chancellors and visiting chancellors of many national law universities. He is the head of the institution, judicial institution in the country, Supreme Court's Chief Justice of India. So therefore, not allowing him or asking him not to come is not justified. It is condemned. Some students are being misled. Whatever order the Chief Justice of India gives, it is an order which is a judicial order, and we have to respect that order.
2: Itna hum zarur kehna chahenge ki agar constitution ka highest interpreter koi hai to Supreme Court hai. और अगर सुप्रीम कोर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन दिए गए हैं, जो फंडामेंटल राइट्स है, उसी का अगर वायलेशन हो और उन्हीं का आप रोके, तो फिर आदमी विवश हो जाता है कि हम करें तो क्या करें. एक आस्था, एक विश्वास टूटता है. लेकिन चलिए, मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने बातें कही थी वो वापस ले ली गई है, और संवैधानिक जो प्रावधान है उसको सेफ गार्ड करना उनकी जिम्मेवारी है, और जिम्मेवारी को वो आगे निभाएं, यही हम अपेक्षा करते हैं.
3: Let's just tell you about that U-turn. The Bar Council of India has now, of course, reversed its decision to block the enrollment of 2026 graduates from Nalsar. Earlier, state bar councils were told not to enroll these graduates, while details of the students behind the protest were sought and a fact-finding inquiry was ordered. The Bar Council has now said that all 2026 Nalsar graduates can seek enrollment and they can choose any state bar council. The fact-finding inquiry, however, will continue. The Bar Council says further action will be taken after the inquiry report. Moving on to another controversy, this is a political one. The Congress faces a sexism storm after Leader of Opposition of the Lok Sabha, Rahul Gandhi, and Senior Congress Leader Sandeep Dixit's controversial Melanie jibe at a Delhi convention. The exchange has triggered a fresh political row, with the BJP accusing Congress leaders of making vulgar references to Melanie. BJP has slammed the remarks as vulgar, accusing Congress leaders of targeting the Italian Prime Minister. J.P. Nadda called Rahul Gandhi's conduct a misfortune for the country's democracy, saying having an opposition leader like this was, quote-unquote, distressing. The BJP says the remarks are not only sexist but could also risk India-Italy ties. The backlash is mounting, with BJP leaders accusing Rahul Gandhi of cheap innuendo and disrespect.
4: I have not reached there yet.
5: एक चीज पूछ सकता हूँ?
4: हाँ.
5: मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था.
4: I have not reached there yet.
5: एक चीज पूछ सकता हूँ?
4: हाँ.
5: मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था.
4: I have not reached there yet.
6: जो आदमी मानसिक दिवालियेपन में हो, राहुल गांधी उसी श्रेणी में आते हैं. उन्हें संसद के बदले आगरा जैसे संस्थान में रहना चाहिए. और जिसका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, नीचता की हद है. और राहुल गांधी आज लगभग, मैं तो पहली बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी आधा फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे से झलकता है वो पागल हो चुके हैं।
7: राहुल गांधी जी के लिए मैं इतना ही कहूँगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। जनता ने जिनको तीन तीन बार नकारा, अब वो गाली गलौज पर उतर आए हैं, ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। राहुल गांधी जी की भाषा अमर्यादा और अहंकार से भरी नजर आती है। राजनीति में मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अशोभनीय टिप्पणी, संवैधानिक पदों का अपमान, ये एक आदत सी बन गई है राहुल गांधी जी की। अब तो लगता है राहुल गांधी जी का पालन पोषण और संस्कार, इस पे प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। कांग्रेस की मानसिकता उजागर हो रही है।
8: क्या हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में? भारतवर्ष अकेला हो गया था, अलग थलग पड़ गया था, कोई देश हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। वो तो हमारे एक परीक्षा की घड़ी थी ना, तो राहुल गांधी ने उसी का इजहार किया है। गले मिले हैं, गले मिलना मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है, पर बात अगर आएगी किसने क्या कहा है तो फिर जवाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी, आपने प्रधानमंत्री रहते हुए एक प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता जी को कहा था, ओ दीदी, वो अच्छा था। आप किसी के गर्लफ्रेंड की कीमत लगा रहे थे, वो अच्छा था। आप सर्वोच्च नेतृत्व के कांग्रेस को क्या क्या शब्द बताए, मैंने अपनी आंखों से सुना और देखा है। मेरे पीछे रेणुका चौधरी बैठी हुई थी, उनको स्वर्णरेखा कहा है।
2: ना मुझे, उन्हें ये पता है कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा क्या होती है। हर राष्ट्राध्यक्ष के साथ मिलने का अलग अलग तरीका होता है, उन देश के साथ आप जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार बाहें फैला के, जिस प्रकार अगला की इच्छा है उनके या ना हो, जिस प्रकार गले मिलते हैं, तो आ बैल मुझे मार वाली अगर जो स्थिति में जाके बोलते हैं, उन्हीं बातों को कल राहुल गांधी जी ने कहा। राहुल गांधी जी ने कोई ना उन्होंने कोई सीमा क्रॉस की, ना उन्होंने कोई, उन्होंने व्यंगात्मक शैली में कहा है कि देश की प्रतिष्ठा इससे जुड़ी हुई है और देश की गरिमा इससे जुड़ी हुई है, प्रधानमंत्री पद की गरिमा जुड़ी हुई है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी जिन बातों को लगातार या फिर वो हमें आलोचना कर रहे हैं, उन्हें बतलाना चाहिए कि अगर सदन में प्रधानमंत्री जी जर्सी गाय जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, 56 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाली बात करते हैं, तो ये प्रधानमंत्री पद का अनुरूप है क्या? तो पहले तो मैं समझता हूँ राजनीतिक संस्कार उनको सीखना चाहिए, उसके बाद किसी पर उंगलियाँ उठानी चाहिए।
9: The behavior of Rahul Gandhi proves that he is the leader of crowns. He also proves that he is not fit to be in public life. This also shows that he is a man who is extremely hateful and he hates the people of the country. This is why his distasteful act against the Honorable Prime Minister's chair, who is third time elected Prime Minister of the country, also shows that Rahul is no longer fit to be in public life. But more importantly, it also brings forward the upbringing of Rahul Gandhi. His behavior is that of a professional anarchist, and his behavior has sealed the fate of the Congress party to sit in opposition in 2029 and beyond, because what he did was just not distasteful, it was an insult to the people of the country, it was also an insult to the women of the country, where Rahul Gandhi supported and bagged and laughed at a misogynist and a sexist act.
3: In other news, Karnataka Minister Zameer Ahmed has stoked a row after refusing to hoist a flag on Independence Day. Chief Minister D.K. Sivakumar has dropped the name of Zameer Ahmed from the list of district in charge. This comes after Karnataka Minister Ahmed wrote to the Chief Minister requesting that he is not assigned any responsibility of district in charge minister for any district in the coming days. He also sought an exemption from hoisting the national flag on Independence Day during its celebrations. Sources say Zameer is miffed over the portfolio changes. BJP has targeted the DKS government over this and accused the Congress of insulting the national flag and questioning the delay in cabinet allocation.
10: Hoisting a national flag on August 15th, it's a responsibility, it's a pride every Indian has. So by rejecting to hoist the national flag, you're not only insulting the national flag, you're also insulting your ministry. So I demand Zameer Ahmed ji, respectfully, please take back your decision. It is your duty. It is not an option. Please go and hoist the national flag on August 15th at Vijayanagara district.
11: See, why this opposition, when they got lot of issues of students in the social sector, why
12: why they want to talk all on this unnecessarily. Zameen.

0: right.
1: Definitely, we are not inducted. It's a known fact. If they are fighting, I personally feel it's a good one. But they cannot blame. We are the people who brought the resolution from the Gram Panchayat to Taluk Panchayat, Jilla Panchayat. That time they have opposed only. Till now also, they are not agreeing to give 33% women resolution. Fair enough. For this point, yes, we do agree that we have not inducted. In future days, we'll induct definitely.
2: A development coming in. It's big relief to the leader for opposition of the Lok Sabha, Rahul Gandhi, in the defamation case over Veer Savarkar. The Supreme Court has quashed the summons by the magistrate in the defamation case. Nupur now joins me live. Nupur, just take us through what the Supreme Court has said. This is being seen, of course, as a relief to the Congress leader.
3: Well, Vedika, this is in fact a big relief to Rahul Gandhi because the Supreme Court has quashed this case. It has allowed the petition filed by Rahul Gandhi in the Supreme Court against the summons issued by the magistrate of the UP court. It had noted, the Supreme Court basically noted that there was no sanction, prior sanction from the UP government to go ahead with this case, and that's why the case cannot be proceeded further. So this is in fact a big relief, a big win for Rahul Gandhi, that the defamation case over his remarks that were made against Veer Savarkar, it stands closed today because of a lack of sanction from the UP government.
2: Nupur, thanks for joining us live with that update coming in from the top court. Moving on now, Harsimrat Kaur Badal, the wife of Sukhbir Badal, has thanked Prime Minister Modi for inquiring about his health. She also expressed gratitude to the Prime Minister for taking immediate cognizance of the incident and directing central agencies for probe. An FIR has been registered in connection with the attack. The police have booked an FIR under charges of attempt to murder, assault or criminal force to deter a public servant from discharge of duty and the Arms Act. The Akali Dal chief was returning from a Gurdwara when the attack took place, leaving him with an injury to his right hand. He has undergone surgery and is now said to be stable. The Akali Dal, meanwhile, is demanding a CBI probe, calling the incident a total intelligence failure.
4: कल बहुत ही कायरपूर्ण ये हरकत रही नांदेड़ में, जहां पर सुखबीर सिंह बादल, जो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं पंजाब के, अकाली दल के चीफ हैं, उनकी जान जो है बाल बाल बची. आपके एक सिक्योरिटी ऑफिसर ने जान जोखिम पे डाल के उनको बचाया. आपकी पहली टिप्पणी इस पर क्या है, क्या एक्शन लिया जा रहा है?
5: बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और पंजाब के एक्स डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह बादल जी के ऊपर जो जानलेवा अटैक हुआ है, हमला हुआ है, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं. और इसमें मैंने कल ही वहाँ के एसपी से बात की और एमपी हरसिमरन कौर बादल जी से भी मैंने बात की और तत्काल हमारी गवर्नमेंट ने कॉग्निजेंस लिया हुआ और उनके ऊपर, उनको जो हमलावर थे, हमलावर उसको भी अरेस्ट हो गई है, तत्काल अरेस्ट हो गया. और मैंने कहा कि ये जानलेवा हमला है, अटेम्प्ट टू मर्डर वाली केस है, इसको कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. और इसकी क्या साजिश है, इसकी क्यों इसने जानलेवा हमला किया है, इसके साथ और कौन कौन साथी है, ये सभी लोगों की जांच करने के निर्देश दिए हुए हैं. इसकी पुलिस भी जांच कर रही है, एसपी से मैंने खुद बात की और वहाँ एटीएस भी उसकी जाँच कर रही है. और इसलिए इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा. ये एक्स डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र में गुरुद्वारा में आकर ऐसा हमला करना, ये तो बहुत ही निंदाजनक होगी, कोई भी छूटेगा नहीं उसमें से.
4: शिंदे जी, अगर मैं आपको पूछूं, ये पहला वाकया नहीं है जब सुखबीर सिंह बादल जी पर जानलेवा हमला हुआ. 2024 के दिसंबर में भी जो है पंजाब में, अमृतसर में ये हमला हुआ था उन पर, उसके ऊपर भी बहुत जो है राजनीति चली है. लेकिन अब जो ये हमला हुआ है, मुझे पता है कि अभी जांच जारी है, अभी पूरे तथ्य सामने नहीं आए, लेकिन कुछ जानकारी आप दे सकते हैं, कौन था, क्या ये कुछ षड्यंत्र था या अकेला ये
5: नहीं, जो अरेस्ट हुआ है, जिसको पकड़ा, उसने हमला किया, उसको पकड़ लिया है, अरेस्ट हुआ है, उसकी जाँच चालू है, तो उसे जांच चालू है, इंट्रोगेशन में उसे सब बातें सामने आएगी. ये पुलिस भी कर रही है, एसपी वहाँ के, और खुद वो एसपी मॉनिटर कर रहे हैं और एटीएस भी इसकी जांच कर रहे हैं. जो सच है, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा. और जो भी हमलावर है और भी उसके अगर कोई साथी होंगे, ये साजिश से मारा होगा, अटैक किया होगा, तो बिल्कुल उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कड़े कानून की धारा, अटेम्प्ट टू मर्डर के कानून से

0: उसके ऊपर केस दर्ज एफ आई आर दर्ज है और कठोर कार्रवाई होगी।
1: हमला हुआ है उस गुरुद्वारा में, जो उनकी जो कमेटी है जिसने हमला किया है वो बंदा वहीं पर 2 साल से काम कर रहा था, और अभी उसने किस इंटेंशन से वो हमला किया है, क्यों हमला किया है, उसके वो सब इंक्वायरी हमने चालू की है और इंक्वायरी के बाद पता चलेगा।
2: कुछ इंक्वायरी कमेटी बिठाई है आपकी, कुछ बातचीत हुई है वहाँ के एसपी से?
1: कंसर्न जो आईजी है मेरे, उनके साथ में बात हुई है, वहाँ के जो कलेक्टर है मेरे, उनके साथ में भी बात हुई है, और ऑनरेबल सीएम सर ने भी इसमें इंक्वायरी शुरू करने के आदेश दिए हैं, कंसर्न एसपी को आदेश दिए हैं, और इसमें जो भी उनकी सिक्योरिटी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी उनको प्रोवाइड की गई थी, जेड सिक्योरिटी उनको है तो जेड सिक्योरिटी उनको दी गई थी।
3: हरसिमरत कौर बादल जी, मेंबर पार्लियामेंट, शी इज विद सुखबीर सिंह बादल, आई थिंक शी स्पोक ऑन, दे स्पोक ऑन सिमरत जी फोन, शी वुड बी द बेस्ट पर्सन टू आंसर इट, बट व्हाट आई हैव बीन टोल्ड, ही इंक्वायर्ड अबाउट सुखबीर जीज सेफ्टी एंड ही इज विश्ड हिम अर्ली रिकवरी एंड ऑल्सो ही हैज अशोर्ड द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली एज वेल एज थरो प्रोब into this entire incident।
4: पोलिटिकली आपकी जितनी मर्जी राइवलरी हो, लेकिन इस तरह का कोई भी एक्ट है कि वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और गुरुद्वारा साहिब के कैंपस में तो बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जा सकती, और मैं मांग करूँगा महाराष्ट्र सरकार इस पर थॉरली जांच करे, और जो भी लोग हैं ऐसे जिन्होंने इस तरह का हमला किया है उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो, और जो सुखबीर बादल जी हैं वो जल्दी सेहतयाब हों मैं उम्मीद करता हूँ।
5: जड़ी घटना वापरी हैगी, जड़ा एक न्यांग सिंह ने सरदार सुखबीर सिंह उत्ते हमला किया है और उन्होंने बांह दे विच नेजा मारिया है हाथ दे गोड़ दे उत्ते, ये बड़ी अफसोसनाक गल है। 2 साल दे विच 2 जगह दे उत्ते ये हमले हुए हैं, एक दरबार साहब ते जदों अकाल तख्त साहब के हुक्मनामे की बड़ी श्रद्धा ते सत्कार नाल सेवा निभा रहे सन।
6: बेहद अफसोस की बात है, कई बार इन पे हमला किया गया है और मैं समझता हूँ इसमें सिक्योरिटी की भी कमजोरी है, क्योंकि लोगों को याद रखना चाहिए और हुकूमतों को याद रखना चाहिए कि ये बहुत वल्नरेबल शख्सियतें हैं और पहले भी हमला हुआ, और निंदा करते हैं इसकी जो ये हुआ है, और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इनको सेहत बख्शे और जल्दी से ठीक हो जाएं और मुल्क के लिए काम करें।
7: ऑनरेबल डिप्टी सीएम नांदेड़ के टूर पे थे, उसमें माता साहेब मुगट का जो गुरुद्वारा है वहाँ से वो आते समय उनके ऊपर अटेम्प्ट किया उनको अटैक करने का, उसमें उनको माइनर इंजरी हुई है, जो स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का जो पीएसआई है उनको भी इंजरी हुई है, तो अभी दोनों की जो तबीयत है वो स्टेबल है, आउट ऑफ डेंजर है, एंड पुलिस ने उनको कस्टडी में लिया है, तो आगे का इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है।
8: कहाँ कहाँ लगा है, पुलिस अफसर को कहाँ लगा है और बादल जी को कहाँ लगा है?
7: दोनों को भी हाथ पे लगा है, उनको राइट फोर आर्म पे एक आई थिंक 4-5 सेंटीमीटर कुछ वाउंड है, तो उनका अभी डॉक्टर इलाज कर रहे
9: हैं। तो अच्छा हो रहे हैं, मगर थोड़ा सा दर्द भी हो रहा है मन को।
10: कब आपको इंसिडेंट के बाद?
9: दो बजे तक समझ में आया।
10: आप हस्बैंड से मिली हैं हॉस्पिटल में?
9: वो मिली ना 4 बजे तक जाके मिल के बात करके।
10: क्या बोल रहे हैं, कैसी तबीयत है उनकी?
9: ठीक है, अच्छे है बोल रही हो।
10: बादल साहब की फैमिली जो वीआईपी हैं, उनकी फैमिली से भी बात मुलाकात हुई है आपकी?
9: हुई ना, वो भी आए थे मैडम भी आके बात करके।
10: क्या बोला हरसिमरत?
9: आभार मान के बोल लो।
10: आभार मान रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं आपको।
9: बोल रहे हैं तुम्हारा वजह से परिवार बच गए, ऐसी बात करके।
11: On to an NDTV exclusive. For 4 seconds, Air India Phuket Delhi plane had no flight controls. We've accessed new details in the Air India Phuket Delhi scare in this NDTV exclusive. We bring you details of what happened inside the cockpit. Airbus's initial black box analysis shows that A320 lost all key flight controls for 4 critical seconds.

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
2: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
3: हरियाणा।
2: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
3: डेढ़ महीने पे।
2: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
3: 3 साल।
2: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
3: बहुत।
2: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
3: श्रीनगर तक अलाउड।
2: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
1: See, the sacrifice is unbelievable, you know?

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
2: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना।
3: आप कहाँ से हैं?
4: हरियाणा।
2: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
4: डेढ़ महीने पे।
2: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
4: 3 साल।
2: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
4: बहुत।
2: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
4: श्रीनगर तक अलाउड।
2: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
1: See, the sacrifice is unbelievable, you know?

मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
2: बैठ सकता आपके साथ? खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
3: हरियाणा।
2: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
3: डेढ़ महीने पे।
2: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
3: 3 साल।
2: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
3: बहुत।
2: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
1: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
4: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।

0: क्लीन एनर्जी की कहानी और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

0: उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पंजाब के अकाली दल के चीफ हैं, उनकी जान जो है बाल बाल बची, आपके एक सिक्योरिटी ऑफिसर ने जान जोखिम पे डाल के उनको बचाया, आपकी पहली टिप्पणी इस पर क्या है, क्या एक्शन लिया जा रहा है?
1: ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और पंजाब के एक्स डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह बादल जी के ऊपर जो जानलेवा अटैक हुआ है, हमला हुआ है, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और इसमें मैंने कल ही वहाँ के एसपी से बात की और एमपी हरसिमरन कौर बादल जी से भी मैंने बात की और तत्काल हमारी गवर्नमेंट ने कॉग्निजेंस लिया हुआ और उनके ऊपर उनको जो हमलावर थे हमलावर उसको भी अरेस्ट हो गई है, तत्काल अरेस्ट हो गया। और मैंने कहा कि ये जानलेवा हमला है, अटेम्प्ट टू मर्डर वाली केस है, इसको कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी क्या साजिश है, इसकी क्यों इसने जानलेवा हमला किया है, इसके साथ और कौन कौन साथी है, ये सभी लोगों की जांच करने के निर्देश दिए हुए हैं। इसकी पुलिस भी जांच कर रही है, एसपी से मैंने खुद बात की और वहाँ एटीएस भी उसकी जांच कर रही है और इसलिए इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये एक्स डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र में गुरुद्वारा में आकर ऐसा हमला करना, ये तो बहुत ही निंदाजनक बात है, इसका निंदा कड़ी निंदा मैं करता हूँ और इसकी पूरी जांच होगी, कोई भी छूटेगा नहीं उसमें से।
0: शिंदे जी, अगर मैं आपको पूछूं, ये पहला वाकया नहीं है जब सुखबीर सिंह बादल जी पर जानलेवा हमला हुआ, 2024 के दिसंबर में भी जो है पंजाब में अमृतसर में ये हमला हुआ था उन पर, उसके ऊपर भी बहुत जो है राजनीति चली है, लेकिन अब जो ये हमला हुआ है, मुझे पता है कि अभी जांच जारी है, अभी पूरे तथ्य सामने नहीं आए, लेकिन कुछ जानकारी आप दे सकते हैं, कौन था, क्या ये कुछ षड्यंत्र था या अकेला ही
1: नहीं, वो जो अरेस्ट हुआ है जिसको पकड़ा उसने हमला किया उसको पकड़ लिया है, अरेस्ट हुआ है उसकी जाँच चालू है, तो उसे जाँच चालू है, इंट्रोगेशन में उससे सब बातें सामने आएगी, ये पुलिस भी कर रही है एसपी वहाँ के और खुद वो एसपी मॉनिटर कर रहे हैं और एटीएस भी इसकी जांच कर रहे हैं, जो सच है दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा, जो भी हमलावर है और भी उसके अगर कोई साथी होंगे, ये साजिश से मारा होगा, अटैक किया होगा, तो बिल्कुल उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कड़े कानून की धारा अटेम्प्ट टू मर्डर के कानून से उसके ऊपर केस दर्ज एफआईआर दर्ज है और कठोर कार्रवाई होगी।
2: All right, that was Maharashtra's deputy chief minister. They're promising a thorough probe into this matter, the attack on Sukhbir Singh Badal. Let's listen into some more reactions.
3: जो भी हमला हुआ है उस गुरुद्वारा में जो उनकी जो कमेटी है जिसने हमला किया है वो बंदा वहीं पर दो साल से काम कर रहा था और अभी उसने किस इंटेंशन से वो हमला किया है, क्यों हमला किया है, उसके सब इंक्वायरी हमने चालू की है और इंक्वायरी के बाद पता चलेगा।
4: कुछ इंक्वायरी कमेटी बिठाई है आपकी, कुछ बातचीत हुई है वहाँ के एसपी से?
3: कंसर्न जो आईजी है मेरे उनके साथ में बात हुई है, वहाँ के जो कलेक्टर है मेरे उनके साथ में भी बात हुई है और ऑनरेबल सीएम सर ने भी इसमें इंक्वायरी शुरू करने के आदेश दिए हैं, कंसर्न एसपी को आदेश दिए हैं और इसमें जो भी उनकी सिक्योरिटी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी उनको प्रोवाइड की गई थी, जेड सिक्योरिटी उनको है तो जेड सिक्योरिटी उनको दी गई थी।
5: हरसिमरत कौर बादल जी मेंबर पार्लियामेंट, शी इज विद सुखबीर सिंह बादल, आई थिंक शी स्पोक ऑन दे स्पोक ऑन सिमरत जी फोन, शी वुड बी द बेस्ट पर्सन टू आंसर इट, बट व्हाट आई हैव बीन टोल्ड ही इंक्वायर्ड about Sukhbir ji's safety and he's wished him early recovery and also he has assured the safety and security of the family as well as a thorough probe into this entire incident.
6: Politically aapki jitni marzi rivalry ho lekin is tarah ka koi bhi act hai ki wo katai bardasht nahi kiya ja sakta aur गुरुद्वारा साहिब के कैंपस में तो बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जा सकती और मैं मांग करूंगा महाराष्ट्र सरकार इस पे थॉरली जांच करे और जो भी लोग हैं ऐसे जिन्होंने इस तरह का हमला किया है उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो और जो सुखबीर बादल जी हैं वो जल्दी सेहतयाब हों मैं उम्मीद करता हूँ।
7: ऑनरेबल डिप्टी सी एम नांदेड़ के टूर पे थे, उसमें माता साहेब मुगट का जो गुरुद्वारा है वहाँ से वो आते समय उनके ऊपर अटेम्प्ट किया उनको अटैक करने का, उसमें उनको माइनर इंजरी

0: इंजरी हुई है, जो स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का जो पीएसआई है उनको भी इंजरी हुई है। तो अभी दोनों की जो तबीयत है वो स्टेबल है, आउट ऑफ डेंजर है, एंड पुलिस ने उनको कस्टडी में लिया है, तो आगे का इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है।
1: कहाँ कहाँ लगा है, पुलिस अफसर को कहाँ लगा है और बादल जी को कहाँ लगा है?
0: दोनों को भी हाथ पे लगा है, उनको राइट फोर आर्म पे एक आई थिंक 4-5 सेंटीमीटर कुछ वाउंड है, तो उनका अभी डॉक्टर इलाज कर रहे हैं।
2: It's very sad that this kind of act happened in the Gurdwara premises, and I strongly condemned it because the Gurdwaras are for the worships, not for the personal grudges. So the deed it was done by some Nihang Singh, it could be his personal enmity, but it is not for the community, and I think this should not be happened in the Gurdwaras. So all of the Sikh communities are condemning it, and I am with them that the act like this should not be happening in the Gurdwara.
3: दिल तो अच्छा हो रहा है, मगर थोड़ा सा दर्द भी हो रहा है मन को।
4: कब आपको इंसिडेंट के बाद?
3: दो बजे तक समझ में आया।
4: आप हस्बैंड से मिली हैं हॉस्पिटल में?
3: वो मिली ना 4 बजे तक जाके मिलके बात करके।
4: क्या बोल रहे हैं, कैसी तबीयत है उनकी?
3: ठीक है, अच्छे है, बोल रही हूँ।
4: बादल साहब की फैमिली जो वीआईपी हैं, उनकी फैमिली से भी बात मुलाकात हुई है आपके?
3: हुई ना, वो भी आए थे मैडम भी आके बात करके।
4: क्या बोला हर्षिम?
3: आभार मान के बोल रही हूँ।
4: आभार मान रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं आपको।
3: बोल रहे तुम्हारा वजह से परिवार बच गए, ऐसी बात करके।
5: Now, the man accused of attacking Sukhbir Singh Badal has been identified as 62-year-old Jaspal Singh, a Nihang and a Sevadar at the Nanded Gurudwara. He's in police custody. He was taken in police custody yesterday. Now, he told the police that he became a Nihang few years ago. The Nanded SP says that Jaspal had been working as a Sevadar at the Nanded Gurudwara for the past 2 years, that he holds a BCom and LLB degree. But the bigger question is, what drove him to attack the Akali Dal chief? Sources tell NDTV that during questioning, Jaspal reportedly expressed anger against Badal over the drug menace in Punjab, even blaming him for turning the state into Urta Punjab. The motive is still under investigation, and cops are questioning Jaspal Singh for further details.
6: लगभग 2 बजे के आसपास साहब जो है माता साहब गुरुद्वारा विजिट पे गए थे, तो गुरुद्वारा विजिट करने के बाद वहाँ से वापस आते वक्त सीढ़ियाँ के पास एक वहाँ का सेवादार है, उसने अचानक से आके अपने कृपाण से अटैक करने की कोशिश की, जिसमें हमारा एक साहब को राइट हैंड में इंजरी हुई है। ये होते ही हमने इमीडिएटली उस जो अटैकर था उसको अपने कस्टडी में ले लिया और उससे इंट्रोगेशन चल रही है। वो लगभग 62 साल का उम्र का है और लगभग 2 साल से यहाँ पे सेवादार काम कर रहा था गुरुद्वारे में।
5: In other news now, the Congress faces a sexism storm after Rahul Gandhi and Sandeep Dixit's controversial Melanie jibe at the Delhi convention. This exchange yesterday triggered a fresh political row, with the BJP accusing Congress leaders of making a vulgar reference to Melanie. BJP slammed the remarks as vulgar, accusing Congress leaders of targeting the Italian Prime Minister Giorgia Meloni. JP Nadda called Rahul Gandhi's conduct a misfortune for the country's democracy, saying having a position like leader like this was distressing. The BJP remarks are not only sexist but could also risk India-Italy ties. The backlash is mounting, with the leaders accusing Rahul Gandhi of cheap innuendo and disrespect. The Congress has hit back, raising several remarks made by BJP leaders in the past, including by the Prime Minister.
7: जो आदमी मानसिक दिवालियेपन में हो, राहुल गांधी उसी श्रेणी में आते हैं। उन्हें संसद के बदले आगरा जैसे संस्थान में रहना चाहिए, और जिसका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, नीचता की हद है। और राहुल गांधी आज लगभग, मैं तो पहली बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी आधा

0: They, both times, they attacked me in the holiest places. First time in Golden Temple and second time in Takht Hazur Sahib. And I always said, ki jide sir te Guru Sahib da hath hoye, unnu koi aanch nahi aundi. Jinna marzi zor la len, sara Parmatma de hath hunda hai. Main dhanwad karda hai Guru Gobind Singh ji Maharaj da. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਏ ਆ ਭਾਵੇਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਗਾਇਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਾ ਡਰਿਆ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਵਚਨਬੰਧ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹਾਰਮਨੀ ਇਜ਼ ਨੰਬਰ 1.
1: NDTV also spoke with the Deputy Chief Minister of Maharashtra, Eknath Shinde. He condemned the attack on Sukhbir Badal in Nanded and shared more details.
2: कल बहुत ही कायरपूर्ण ये हरकत रही नांदेड़ में, जहां पर सुखबीर सिंह बादल जो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पंजाब के अकाली दल के चीफ हैं, उनकी जान जो है बाल बाल बची. आपके एक सिक्योरिटी ऑफिसर ने जान जोखिम पे डाल के उनको बचाया. आपकी पहली टिप्पणी इस पर क्या है, क्या एक्शन लिया जा रहा है?
3: ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और पंजाब के एक्स डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह बादल जी के ऊपर जो जानलेवा अटैक हुआ है, हमला हुआ है, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं. और इसमें मैंने कल ही वहां के एसपी से बात की और एमपी हरसिमरन कौर बादल जी से भी मैंने बात की और तत्काल हमारी गवर्नमेंट ने कॉग्निजेंस लिया हुआ और उनके ऊपर उनको जो हमलावर थे हमलावर उसको भी अरेस्ट हो गई है, तत्काल अरेस्ट हो गई. और मैंने कहा कि ये जानलेवा हमला है, अटेम्प्ट टू मर्डर वाली केस है, इसको कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी क्या साजिश है, इसकी क्यों इसने जानलेवा हमला किया है, इसके साथ और कौन कौन साथी है, ये सभी लोगों की जांच करने के निर्देश दिए हुए हैं. इसकी पुलिस भी जांच कर रही है, एसपी से मैंने खुद बात की और वहाँ एटीएस भी उसकी जाँच कर रही है और इसलिए इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा. ये एक्स डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र में गुरुद्वारा में आकर ऐसा हमला करना, ये तो बहुत ही निंदाजनक बात है. इसका निंदा, कड़ी निंदा मैं करता हूँ और इसकी पूरी जांच होगी, कोई भी छूटेगा नहीं उसमें से.
2: शिंदे जी, अगर मैं आपको पूछूं, ये पहला वाकया नहीं है जब सुखबीर सिंह बादल जी पर जानलेवा हमला हुआ. 2024 के दिसंबर में भी जो है पंजाब में अमृतसर में ये हमला हुआ था उन पर, उसके ऊपर भी बहुत जो है राजनीति चली है. लेकिन अब जो ये हमला हुआ है, मुझे पता है कि अभी जांच जारी है, अभी पूरे तथ्य सामने नहीं आए, लेकिन कुछ जानकारी आप दे सकते हैं, कौन था, क्या ये कुछ षड्यंत्र था या अकेला ये
3: नहीं, जो अरेस्ट हुआ है, जिसको पकड़ा, उसने हमला किया, उसको पकड़ लिया है, अरेस्ट हुआ है, उसकी जाँच चालू है, तो उसे जाँच चालू है, इंट्रोगेशन में उससे सब बातें सामने आएगी. ये पुलिस भी कर रही है, एसपी वहां के और खुद वो एसपी मॉनिटर कर रहे हैं और एटीएस भी इसकी जांच कर रहे हैं. जो सच है, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा. जो भी हमलावर है और भी उसके अगर कोई साथी होंगे, ये साजिश से मारा होगा, अटैक किया होगा, तो बिल्कुल उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कड़े कानून की धारा अटेम्प्ट टू मर्डर के कानून से उसके ऊपर केस दर्ज, एफआईआर दर्ज है और कठोर कार्रवाई होगी.
1: All right, Maharashtra Deputy Chief Minister saying that they're going to thoroughly investigate this murderous attack on Sukhbir Singh Badal. Let's take a look at what some of the other comments have been.
4: जो भी हमला हुआ है उस गुरुद्वारा में जो उनकी जो कमेटी है, जिसने हमला किया है वो बंदा वहीं पर दो साल से काम कर रहा था और अभी उसने किस इंटेंशन से वह हमला किया है, क्यों हमला किया है, उसके सब इंक्वायरी हमने चालू की है और इंक्वायरी के बाद पता चलेगा.
5: कुछ इंक्वायरी कमेटी बिठाई है आपकी, कुछ बातचीत हुई है वहाँ के एसपी से?
4: कंसर्न जो आईजी है मेरे, उनके साथ में बात हुई है. वहाँ के जो कलेक्टर है मेरे, उनके साथ में बात हुई है. और ऑनरेबल सीएम सर ने भी इसमें इंक्वायरी शुरू करने के आदेश दिए हैं, कंसर्न एसपी को आदेश दिए हैं। और इसमें जो भी के सिक्योरिटी जो जो कैटेगरी है वो कैटेगरी उनको प्रोवाइड की गई थी, जेड सिक्योरिटी उनको है तो जेड सिक्योरिटी उनको दी गई थी।
6: हरसिमरत कौर बादल जी मेंबर पार्लियामेंट, शी इज विद सुखबीर सिंह बादल, आई थिंक शी स्पोक ऑन दे स्पोक ऑन सिमरत जी फोन, शी वुड बी द बेस्ट पर्सन टू आंसर इट, बट व्हाट आई हैव बीन टोल्ड ही इंक्वायर्ड अबाउट सुखबीर जीज सेफ्टी and he's wished him early recovery and also he has assured the safety and security of the family as well as a thorough probe into this entire incident.
1: Well, with that, time for us to slip into a short break. Coming up on the other side, we'll get you news from Karnataka. Stay tuned. NDTV accesses details of the Sukhbir Badal attack.

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: ईसीआई इज फेसिंग। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्यों विड्रॉ करना पड़ा सर, या फिर क्यों मॉडिफाई करना पड़ा इस पर्टिकुलर ऑर्डर?
1: नहीं देखिए, एक हेस्टी ऑर्डर था, लेकिन पर्पस उस ऑर्डर का, द ओनली पर्पस वाज दैट वाज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। होता क्या है कि जुडिशरी से कोई क्लैश अगर लॉ स्टूडेंट्स को हो गया तो लॉ स्टूडेंट सफ़र करते हैं। पहले 5 दिन का इंटर्नशिप, दे वेर अलाउड टू इंटर इन टू सुप्रीम कोर्ट कैंपस एंड डू इंटर्नशिप फॉर 5 डेज। नाउ दैट हैज बीन लिमिटेड टू 2 डेज ओनली। तो ये छात्रों के इंटरेस्ट के खिलाफ था। 5 दिन में वो कुछ सीखने का उनको मौका मिलता है। इंटर्नशिप एक लिमिटेड पीरियड के लिए, द कॉलेज अलाउज द इंटर्नशिप फॉर ए लिमिटेड पीरियड। तो पर्पस ये था कि छात्रों का इंटरेस्ट का कहीं क्लैश ना हो, छात्रों से जुडिशरी को कोई क्लैश ना हो। तो इसलिए देखिए, जैसे ही हमारे काउंसिल ने रियलाइज किया इस बात को कि छात्रों पर इंक्वायरी या कोई पनिशमेंट का कोई मतलब नहीं है, हम लोगों ने भी सब बैठ के हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, इसको आप हम विड्रॉ करते हैं, देयर विल बी नो क्वेश्चन ऑफ एनी इंक्वायरी और एनी पनिशमेंट और कहीं कुछ नहीं। तुरंत वो ऑर्डर विद इन 40 मिनट्स जो है वो मॉडिफाई हुआ ऑर्डर, और रात में फिर आफ्टर थॉरो डिस्कशन एंड डिलीवरेशंस वी हैव क्लोज दिस चैप्टर फुल्ली। नाउ देयर विल बी नो क्वेश्चन ऑफ एनी इंक्वायरी एनीथिंग। हम छात्रों के भविष्य के लिए, फॉर दी ब्राइट फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स, वी वांट दैट देयर शुड बी ए कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन द जुडिशरी एंड द लॉ स्टूडेंट्स। तो उस पर्पस से हम काम कर रहे हैं। अगर कहीं कम्युनिकेशन कोई गैप हो गया या हमको ये चीज़ एक्सप्लेन करने में कहीं कोई कमी रह गई तो वो अलग बात है, लेकिन पर्पस हमारे बार काउंसिल का या हमारा यही है कि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को कहीं कोई दिक्कत ना पहुँचे, आघात ना पहुँचे, उनका अपना राइट जो कहते हो बना रहे।
2: Let's give you a lowdown of what was the controversy, how the U-turn took place, and what the Supreme Court has said. First up, the controversy started when Nalsar students objected to the Chief Justice of India, Surya Kant's invitation for their convocation in their college. Justice Surya Kant was invited for convocation at their college, which the students were against at. Section of graduating class perhaps opposed the invitation of the Chief Justice of India. Then BCI sought details of the protest organizers, to who were the students who were protesting against Surya Kant's invitation. BCI then questioned students' respect for judicial office. So let's now tell you about the Nalsar row. First up, it was the student boycott. The students opposed CGI Surya Kant's invite. Second, the BCI action. And because there were so many students who were protesting against CGI's invitation to their college, the Bar Council of India took things in their own hands. They blocked enrollment of Nalsar 2026 graduates. They said that they will not get any internships after they graduate. Not just that, the BCI also sought name of various protesters, student protesters and student organizers. Hence, there was a huge backlash on such a harsh decision by the BCI. Hence, the BCI backtracked. The BCI took a U-turn. BCI withdrew order after the backlash that it faced. Apart from that, critics say that this earlier decision of the BCI, it attempted to choke the future of students of Nalsar. And then BCI said that the students are innocent. They blamed external instigators for that kind of protest in the college. And then, of course, came the Supreme Court's intervention. Supreme Court has called the action that the BCI took earlier uncalled for. It goes on to say that the BCI lacks jurisdiction. That's the statement by CGI Surya Kant. Let's also now give you a lowdown of all the directives issued by the Supreme Court on this very case. So the Supreme Court says that students, they have the right to protest, and they also have the unquestionable right to protest as well. And moving on, let's now give you Let's now give you a lowdown of the Supreme Court directives.

0: कि ऑपरेशन क्या कहां कहां तक पहुंचा है, क्योंकि अभी तक भी 3 वर्कर्स है जो ट्रैप्ड है।
1: फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जो 3 लोग है वो मिसिंग है उनके लिए अभी चल रहा है। वहाँ परेशानी की बात यह है कि पानी और जो सिल्ट है वो बहुत ज्यादा वहाँ पर जो टनल में आ रही है उसकी वजह से उसमें काफी सारी दिक्कतें हैं। दोनों साइड से जहाँ से इन है और आउट है टनल का, वहाँ पर काफी सारी जो पंप लगाकर उसको, यानी जो पानी है उसको बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन लगातार जो पानी है वो काफी आ रहा है उसकी वजह से काफी सारी दिक्कतें हैं। और सबसे बड़ी जो परेशानी है जो रेस्क्यू टीम है उनके लिए भी ये परेशानी है, क्योंकि जो टनल के ऊपरी हिस्सा है जहाँ से वो भारी मात्रा में जो पानी आया था वो हिस्सा काफी कमजोर हो गया, वो गिरने की संभावना हो सकती है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत संभल के चलाया जा रहा है। जब तक पानी नहीं निकलेगा, पानी जब तक नहीं निकलेगा तब तक वो 3 लोगों को तलाशना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पानी है करीबन 6 फीट से ज्यादा पानी है, फिर उसके बाद सिल्ट है, हो सकता है वो सिल्ट के नीचे हो या इधर उधर कहीं दबे हो या फिर वो कहीं ऐसे सेफ पैसेज में हो, लेकिन फिलहाल अभी लगातार उनको रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचे थे, इसके अलावा गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी भी वहां पर अधिकारियों से बातचीत की है उन्होंने और सारी चीजों को बारीकी से देखा है और भारत सरकार जो भी मदद कर सकती है उस बात का आश्वासन दिया।
0: जी किशोर जी, ये हम आपके साथ बने रहेंगे इस कहानी में। Yes, I'll tell you all that has happened in this incident. The rescue operation is still underway. Like we said, it's a race against time. There are 3 workers who are still trapped in that tunnel in Uttarakhand's Chamoli after a sudden rush of water and debris entered an under-construction tunnel near Mayapur, trapping workers inside. 7 workers have died and 14 others are injured. So far, 25 people have been rescued while 3 workers still remain trapped inside the tunnel. NDRF, SDRF, ITBP, police and other agencies are working round the clock to reach those still inside as teams battle waterlogging and debris in the tunnel and incessant rainfall there in Uttarakhand's Chamoli. Earlier in the day, Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami also visited the site, reviewing the rescue operation at the under-construction tunnel. He took stock from rescue teams and officials and also issued directions. He will also meet the rescued workers and also checked on the injured. The accident was reported around 7 p.m. on Thursday after heavy water seepage and a landslide triggered the collapse. You can listen to all the reactions coming in as it's a race against time, 3 workers still trapped.
2: वो कुल 22 लोग, ऐसा अनुमान यहाँ पर बताया गया कि 22 लोग कुल काम कर रहे थे, उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में और कुछ लोगों के लिए बेस में भी बात की गई है कि बेस में अगर जिनको भेजना है बेस में भेजा जाएगा और एम्स ऋषिकेश में भी सारी व्यवस्थाएँ वहाँ की गई हैं। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियाँ यहाँ पर हैं, NDRF भी है, SDRF भी है, ITBP के लोग भी हैं, उत्तराखंड के जो हमारा आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा यहाँ पर काम कर रहा है, अन्य एजेंसियाँ, जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है।
3: स्थिति दिक्कत है लेकिन इस तरह से बचाव और राहत कार्य यहाँ पर हुआ है उसके लिए मैं प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा। इस तरह से NDRF, SDRF, GDRF, CISF, CRPF, CRPF, स्थानीय पुलिस और नागरिक प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, यही वजह है कि अधिकतर लोगों को अभी तक निकाला जा चुका है।
4: अभी जो अंदर सिचुएशन है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसके कारण जो है सिचुएशन थोड़ा सा टफ हो रही है, तो NDRF प्लस SDRF भी उसमें लगी हुई है, तो NDRF के ज़्यादातर जो जवान है वो अपना जो भी इक्विपमेंट है उसका यूज़ करके जो है कार्रवाई कर रहे हैं और उसके अनुसार अभी तक जो हमारे पास जो स्ट्रेंथ है तो 28 में से जो 6 रेस्क्यूअर तो बचे 22 में से 18 लोग हम बाहर निकाल चुके हैं अभी, ठीक है, 18 लोग बाहर निकाल चुके हैं, जो 4 लोग हैं उसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो हो सकता है हमें बोट की भी ज़रूरत पड़े तो हम बोट भी हम अंदर अभी जो है डिप्लॉय करेंगे।

0: And shifting our focus to other big news, Shiromani Akali Dal Chief Sukhbir Singh Badal has now exclusively spoken to NDTV after being discharged from the hospital. He was admitted in hospital after an attack on him in Maharashtra's Nanded. He said that he is not scared from any attack, and this is not the first assassination attempt on him. He also said that his father never bowed down to anti-India forces, and he will also never do that. Also, an FIR has been registered in connection with the attack. Police have also booked FIR under charges of attempt to murder, assault or criminal force to deter a public servant from discharge of duty and Arms Act. Meanwhile, Harsimrat Kaur Badal, wife of Sukhbir Singh Badal, has thanked Prime Minister Modi for inquiring about his health. She also expressed gratitude to Prime Minister Modi for taking immediate cognizance. The Akali Dal chief was returning from a Gurudwara in Maharashtra's Nanded when the attack took place, leaving him with an injury on his right hand, along with his PSI, who was also injured.
1: I am feeling perfect. See, lot of forces do not want peace in Punjab and this country. They feel Shiromani Akali Dal is a hindrance to their mission. My father, Sardar Prakash Singh Badal, never compromised against these forces. He always stood for that all communities, all religion people should live together happily. That is the reason whenever my father was a chief minister, he maintained communal harmony and respect for all religions. These forces, which have been prevalent before, tried about a year back also attempt on me. They tried again. Their mission is to take control of the situation in Punjab and disturb the peace, which as president of Akali Dal, I will never allow it. Neither my father allowed it. Both times they attacked me in the holiest places. First time in Golden Temple and second time in Takht Hazur Sahib. I always said ki jide sir te guru sahib da hath hoye ohnu koi aanch nahi aundi. ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਾ ਡਰਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਵਚਨਬੰਧ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹਾਰਮਨੀ ਇਜ਼ ਨੰਬਰ 1।
0: And while NDTV spoke with Deputy Chief Minister of Maharashtra, Eknath Shinde, he has condemned the attack on Sukhbir Singh Badal in Nanded and also shared more details in that exclusive conversation with my colleague Aditya Rajkol.
2: बहुत ही कायरपूर्ण ये हरकत रही नांदेड़ में, जहां पर सुखबीर सिंह बादल जो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पंजाब के अकाली दल के चीफ हैं, उनकी जान जो है बाल बाल बची। आपके एक सिक्योरिटी ऑफिसर ने जान जोखिम पे डाल के उनको बचाया। आपकी पहली टिप्पणी इस पर क्या है, क्या एक्शन लिया जा रहा है?
3: ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और पंजाब के एक्स डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह बादल जी के ऊपर जो जानलेवा अटैक हुआ है, हमला हुआ है, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और इसमें मैंने कल ही वहाँ के एसपी से बात की और एमपी हरसिमरन कौर बादल जी से भी मैंने बात की और तत्काल हमारी गवर्नमेंट ने कॉग्निजेंस लिया हुआ और उनके ऊपर उनको जो हमलावर थे हमलावर उसको भी अरेस्ट हो गई है, तत्काल अरेस्ट हो गया। और मैंने कहा कि ये जानलेवा हमला है, अटेम्प्ट टू मर्डर वाली केस है, इसको कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी क्या साजिश है, इसकी क्यों इसने जानलेवा हमला किया है, इसके साथ और कौन कौन साथी है, ये सभी लोगों की जांच करने के निर्देश दिए हुए हैं। इसकी पुलिस भी जांच कर रही है, एसपी से मैंने खुद बात की और वहाँ

0: ये पहला वाकया नहीं है जब सुखबीर सिंह बादल जी पर जानलेवा हमला हुआ। 2024 की दिसंबर में भी जो है पंजाब में अमृतसर में ये हमला हुआ था उन पर, उसके ऊपर भी बहुत जो है राजनीति चली है। लेकिन अब जो ये हमला हुआ है, मुझे पता है कि अभी जांच जारी है, अभी पूरे तथ्य सामने नहीं आए, लेकिन कुछ जानकारी आप दे सकते हैं कौन था, क्या ये कुछ षड्यंत्र था या अकेला ये
1: नहीं, जो अरेस्ट हुआ है जिसको पकड़ा उसे हमला किया उसको पकड़ लिया है, अरेस्ट हुआ है उसकी जाँच चालू है, तो उसे जाँच चालू है, इंट्रोगेशन में उसे सब बातें सामने आएगी, ये पुलिस भी कर रही है एसपी वहां के और खुद वो एसपी मॉनिटर कर रहे हैं और एटीएस भी इसकी जांच कर रहे हैं, जो सच है दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। जो भी हमलावर है और भी उसके अगर कोई साथी होंगे, ये साजिश से मारा होगा, अटैक किया होगा, तो बिल्कुल उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कड़े कानून की धारा अटेम्प्ट टू मर्डर के कानून से उसके ऊपर केस दर्ज, एफआईआर दर्ज है और कठोर कार्रवाई होगी।
2: Well, a high-level probe has been launched, not just at the state level, but also at the center. Take a listen to all the other political reactions that are coming in on this.
3: जो भी हमला हुआ है उस गुरुद्वारा में जो उनकी जो कमेटी है, जिसने हमला किया है वो बंदा वहीं पर दो साल से काम कर रहा था, और अभी उसने किस इंटेंशन से वह हमला किया है, क्यों हमला किया है, उसके सब इंक्वायरी हमने चालू की है और इंक्वायरी के बाद पता चलेगा।
4: कुछ इंक्वायरी कमेटी बिठाई है आपकी, कुछ बातचीत हुई है वहाँ के एसपी से?
3: कंसर्न जो आईजी है मेरे, उनके साथ में बात हुई है, वहाँ के जो कलेक्टर है मेरे, उनके साथ में भी बात हुई है, और ऑनरेबल सीएम सर ने भी इसमें इंक्वायरी शुरू करने के आदेश दिए हैं, कंसर्न एसपी को आदेश दिए हैं, और इसमें जो भी उनकी सिक्योरिटी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी उनको प्रोवाइड की गई थी, जेड सिक्योरिटी उनको है तो जेड सिक्योरिटी उनको दी गई थी।
5: Simrat Kaur Badal ji, member parliament, she is with Subir Singh Badal. I think she spoke on, they spoke on Simrat ji's phone. She would be the best person to answer it, but what I have been told, he inquired about Subir ji's safety and he's wished him early recovery, and also he has assured the safety and security of the family as well as a thorough probe into this entire incident.
6: This is a cowardly act by the person. I don't know which parties have instigated him to attack Sukhbir Singh Badal. But I can request the state government of Maharashtra and central government, there should be a complete inquiry about this incident. Akal Takht have called Sukhbir Singh Badal and he has admitted whatever mistakes have been done by our government, our workers, our leaders. After that, if any Sikh attack him, he is not a Sikh, he is answerable to Akal Takht.
2: Meanwhile, a disturbing video of a Punjabi Sikh youth reportedly stranded in Mexico has now gone viral on social media. In this 33-second clip that's on your screens right now, the visibly distressed youth is seen crying, pleading with folded hands, warning others against taking the illegal donkey route to reach foreign countries. He claims that he was brought to Mexico through the route by an agent and was severely beaten after attempting to escape. The youth says that he made a mistake and he has already paid the price, while urging others not to fall into the trap of agents promising a safe journey abroad.
7: ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ ਭੱਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਟ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਯਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖਾਂਦੇ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੇਖ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਤੱਕ ਲਿਆਦਾ ਨੀ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵੋ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਿਆ ਵਰਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਜੀ।
2: On that note, we slip into a very short break. Come right back. Lots more lined up for you here on Prime 5.

0: Welcome. You're watching Nationwide at 6 with me, Raisha Sehgal. We have lots lined for you on the show. Of course, the new details on Akali Dal chief Sukhbir Singh Badal's assassination attempt. Apart from that, also the sexism row stoked by LOP Rahul Gandhi. First up, let's tell you all that has happened in the national capital today and how Congress faces a sexism storm after Rahul Gandhi and Sandeep Dixit's controversial Meloni jibe at a Delhi convention. The exchange has now triggered a fresh political row, with the BJP now accusing Congress leaders of making a vulgar reference to Meloni. BJP has slammed the remarks as vulgar, accusing Congress of targeting the Italian Prime Minister Giorgia Meloni. JP Nadda has now called Rahul Gandhi's conduct a misfortune for the country's democracy, saying that having an opposition leader like this was distressing. The BJP says the remarks are not only sexist but could also risk India-Italy ties. The backlash is mounting, with BJP leaders accusing Rahul Gandhi of cheap innuendo and disrespect towards women. The Congress has hit back, raising several remarks made by the BJP in the past, including by the Prime Minister.
1: एक चीज पूछ सकता हूँ, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था।
2: I have not reached there yet.
1: एक चीज पूछ सकता हूँ, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था।
2: I have not reached there yet.
1: एक चीज पूछ सकता हूँ, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था।
2: I have not reached there yet.
3: ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं भारत की विदेश नीति के प्रति जो टिप्पणी की है वो अत्यंत निम्न स्तरीय और निंदाजनक तो है ही, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही पीड़ा देने वाली भी है, क्योंकि अपने लंबे राजनीतिक जीवन में मैंने किसी भी नेता प्रतिपक्ष को, चाहे वो सुषमा जी व अरुण जेटली जी रहे हों अथवा अटल जी और आडवाणी जी रहे हों अथवा अटल जी की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी रही हूं, ऐसा अशोभनीय आचरण यह कल्पना से परे था। और ऐसा आचरण भारत में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मैं मानता हूं कि एक गंभीर खतरे का संकेत है। राहुल गांधी जी के मन में प्रधानमंत्री जी के प्रति चाहे जितनी भी कुंठा भरी हो, परंतु ऐसी अभद्र टिप्पणी यह सर्वथा अस्वीकार्य है। और विशेषकर तब, जबकि मोदी जी के रूप में एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के मान सम्मान को बढ़ाया और विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त किया, और 12 वर्षों में पूर्ण समर्पण से काम करते हुए उन्होंने एक दिन की छुट्टी भी नहीं ली, ऐसे नेता के प्रति ऐसी अभद्र टिप्पणी हर भारतीय के मन को अंदर से कष्ट देने वाली है, पीड़ादायक है।
4: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र सबको देता है, लेकिन मर्यादाओं का उल्लंघन ये बहुत कष्टपूर्ण है। पहले संसद चलने नहीं दी, एक बात कही वो मानने को सरकार तैयार, तो दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी, और जिस ढंग से कल मैंने देखा, एक भारत के नागरिक के नाते मैं कह रहा हूँ, जो व्यवहार नेता प्रतिपक्ष ने किया वो अभारतीय है, अशोभनीय है, अलोकतांत्रिक है, मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाने वाला है। आप किसी को गले लगाते हैं और वो कह रहे हैं एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र की महिला प्रधानमंत्री जी के बारे में, ये क्या कांग्रेस को शोभा देता है? कि ये भारत के विचार है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, उनको माफी मांगनी चाहिए।
5: राहुल गांधी LOP नहीं दिखते हैं, लगता है कोई नौटंकी मंडली के एक पात्र है। और मुझे याद है, मैं सदन का सदस्य था जब ये मोदी जी के जाके गले पड़ गए थे, ये गले पड़े थे, मोदी जी तो गले मिलते हैं, और पूरा सदन तबाह था, आश्चर्यचकित था। तो ये मेंटली डिरेल्ड है, अब इनको समझ में फॉरेन पॉलिसी नहीं आएगा, क्योंकि आप इनका रिकॉर्ड निकाल लें 12 साल का, इनका फॉरेन पॉलिसी है अमेरिका जाना, सरोज के एजेंडे पर भारत को गाली देना, इनका एजेंडा ये है।
6: राहुल गांधी जी के लिए मैं इतना ही कहूँगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। जनता ने जिनको तीन तीन बार नकारा, अब वो गाली गलौज पर उतर आए हैं, ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। राहुल गांधी जी की भाषा अमर्यादा और अहंकार से भरी नजर आती है। राजनीति में मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अशोभनीय टिप्पणी, संवैधानिक पदों का अपमान, ये एक आदत सी बन गई है राहुल गांधी जी की। अब तो लगता है राहुल गांधी जी का पालन पोषण और संस्कार, इस पे प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। कांग्रेस की मानसिकता उजागर हो रही है।
7: लेकिन ये तो क्या हो रहा है इटली के साथ, सारे देश देख रहे हैं, हंसी मजाक किए जा रहे हैं। ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं ना, मेलोडी से मेलोडी, ऐसा तो कभी हुआ नहीं था पहले। तो ये हंसी मजाक की मसला बन चुके हैं। नहीं देखिए, महिला के अपमान की बात तो राहुल गांधी जी नहीं किए ना, जो देख रहे हैं वही बता रहे हैं, जो दर्शाते हैं वही देखते हैं वही बोलते हैं। राहुल गांधी की यही सबसे खूबी है, जो देखते हैं, जो हिंदुस्तान के लोग सोचते हैं वही बोलते हैं। किसी को अपमान की करने की कोई राहुल गांधी जी की ख्वाहिश नहीं है, कभी करते भी नहीं हो।
0: In other news, Shiromani Akali Dal Chief Sukhbir Singh Badal has exclusively spoken to NDTV after being discharged from the hospital. He was admitted in the hospital after an attack on him in Maharashtra's Nanded yesterday. He said that he is not scared from any attack and this is not the first assassination attempt on him. He also said that his father never bowed down to anti-India forces and he will also never do that. Also, an FIR has been registered in connection with the attack. Police have also booked FIR under charges of number one, attempt to murder, assault or criminal force to deter a public servant from discharge of duty and Arms Act as well. Meanwhile, Harsimrat Kaur Badal, wife of Sukhbir Singh Badal, has thanked Prime Minister Modi for inquiring about his health. She also expressed gratitude to Prime Minister Modi for taking immediate cognizance. Meanwhile, the Akali Dal chief was returning from a Gurudwara when the attack took place, leaving him with an injury to his right hand along with his PSI as well.
8: I am feeling perfect. See, lot of forces do not want peace in Punjab and country. Shromani Akali Dal is a hindrance to them.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: How?
2: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
3: It's the Mahi way.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।

0: TOK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is TOK.
0: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
3: रियली
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: How?
2: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
3: It's the Mahi way.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: हाउ?
2: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
3: इट्स द माही वे।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।
7: सबका

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल,
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ हैं सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी।

0: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
1: Really?
0: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Hello and welcome to a brand new show. I am your host, Mayank Chaudhary, and this is Limelight.
2: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज
3: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग चार लोगों के पास है
4: कुछ इससे भी अनोखा
3: कमला पसंद सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला
5: द फ्रंट लाइंस ऑफ कारगिल द फ्यूरी ऑफ ऑपरेशन सिंधु सो मेनी

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: हाउ?
2: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
3: इट्स द माही वे। थोड़े में ज्यादा स्वाद के तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।
5: सबका राजा आग प्योर मसाला।
6: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
7: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
8: Really?
7: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
6: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
9: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है वक्त तराशता है जिसे तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन ना बन जाए आराम के लिए नहीं ठहरता है। जब तक लाजवाब ना बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमन बनना नहीं आसान है।
10: The front lines of Kargil, the fury of Operation Sindhu,
11: so many attacks,
10: the chaos and cries of disaster zones, to fighter jet cockpits, and the world's most defining interviews.
11: It's incredible.
10: He has seen history break live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
11: Welcome to Left, Right, and Center.
10: Hard facts.
11: War-struck country.
10: Hard questions.
11: In the Ukraine.
10: 30 years of trust.
12: In the Kargil area.
11: North Ukraine.
13: In France. In Italy.
11: At Srinagar.
13: Ryan is in France.
11: Vishnu Shom for NDTV.
10: Vishnu Shom. Only on NDTV. He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
14: This location from

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ हैं सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
2: रियली
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: हाउ?
1: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे,
2: इट्स द माही वे।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा,
6: सबका

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज POK.
0: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं. Is it fire?

0: I have not reached there yet.
1: कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं भारत की विदेश नीति के प्रति जो टिप्पणी की है वो अत्यंत निम्न स्तरीय और निंदाजनक तो है ही, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही पीड़ा देने वाली भी है, क्योंकि अपने लंबे राजनीतिक जीवन में मैंने किसी भी नेता प्रतिपक्ष को, चाहे वो सुषमा जी व अरुण जेटली जी रहे हों अथवा अटल जी और आडवाणी जी रहे हों अथवा अटल जी की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी रही हों, ऐसा अशोभनीय आचरण यह कल्पना से परे था। और ऐसा आचरण भारत में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मैं मानता हूं कि एक गंभीर खतरे का संकेत है। राहुल गांधी जी के मन में प्रधानमंत्री जी के प्रति चाहे जितनी भी कुंठा भरी हो, परंतु ऐसी अभद्र टिप्पणी यह सर्वथा अस्वीकार्य है, और विशेषकर तब जबकि मोदी जी के रूप में एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के मान सम्मान को बढ़ाया और विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त किया, और 12 वर्षों में पूर्ण समर्पण से काम करते हुए उन्होंने एक दिन की छुट्टी भी नहीं ली, ऐसे नेता के प्रति ऐसी अभद्र टिप्पणी हर भारतीय के मन को अंदर से कष्ट देने वाली है, पीड़ादायक है।
2: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र सबको देता है, लेकिन मर्यादाओं का उल्लंघन ये बहुत कष्टपूर्ण है। पहले संसद चलने नहीं दी, एक बात कही वो मानने को सरकार तैयार, तो दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी, और जिस ढंग से कल मैंने देखा, एक भारत के नागरिक के नाते मैं कह रहा हूँ, जो व्यवहार नेता प्रतिपक्ष ने किया वो अभारतीय है, अशोभनीय है, अलोकतांत्रिक है, मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाने वाला है। आप किसी को गले लगाते हैं और वो कह रहे हैं एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र की महिला प्रधानमंत्री जी के बारे में, ये क्या कांग्रेस को शोभा देता है? क्या ये भारत के विचार है? मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, उनको माफी मांगनी चाहिए।
0: आचरण नेता प्रतिपक्ष और राहुल गांधी करते हैं, मैं मानता हूं कि आज का युवा पीढ़ी कभी भी उस प्रकार के आचरण और व्यवहार को कोई जगह दे ही नहीं सकता। किस प्रकार के एक देश के राष्ट्राध्यक्ष को किस प्रकार के शब्दों से आप अलंकृत करते हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि जब एक भारत की कूटनीति, भारत की डिप्लोमेसी आज पूरे विश्व में भारत का एक अलग स्थान बनाती, आज भारत का तिरंगे का सम्मान इतना बड़ा है कि जब यूक्रेन और रशिया युद्ध होता है तो भारत के तिरंगा पकड़कर एक पाकिस्तानी नागरिक भी सुरक्षित बाहर निकल सकता है, ये नए नेतृत्व का पहचान है मित्रों। आज विश्व में भारत के नेतृत्व का लोहा माना जा रहा है, भारत के गरीब के घर में किस प्रकार से विकास हो इसकी चिंता हो रही है, आज भारत के तिरंगे को सम्मान विश्व और दुनिया में मिल रहा है, और उस नेतृत्वकर्ता का आप मजाक उड़ाते हैं, उस नेतृत्वकर्ता के बारे में अपमानित शब्दों का प्रयोग करते हैं। कहीं ना कहीं आज भी आपके अंदर विभाजन की मानसिकता अंदर घुसी हुई है, इस बात का परिचायक है मित्रों।
3: वी हैव स्ट्रॉन्ग टाइज विद इटली, आवर टाइज विद इटली इन रीसेंट ईयर्स हैव एक्सपैंडेड एंड स्ट्रेंथेंड इन एवरी विच वे, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट दैट एज पार्ट ऑफ डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस दैट वी स्ट्रेंथेन आवर टाइज कीपिंग इन माइंड एंड बींग रिस्पेक्टफुल ऑफ ईच अदर एंड दिस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू साइड्स।
4: Moving on to other stories that we are tracking, Shiromani Akali Dal Chief Sukhbir Singh Badal has exclusively spoken to NDTV after being discharged from the hospital. He was admitted in hospital after attack on him in Nanded in Maharashtra. He said that he's not scared from any attack and that this is not the first assassination attempt on him. He also said that his father never bowed down to anti-India forces and he will also never do that. Also, an FIR has been registered in connection with the attack. The police have booked FIR under the charges of attempt to murder, assault or criminal force to deter a public servant from discharge of duty and even the Arms Act. Meanwhile, Harsimrat Kaur Badal, wife of Sukhbir Badal, has thanked the Prime Minister for inquiring about his health. She also expressed gratitude to the Prime Minister for taking immediate cognizance. The Akali Dal chief was returning from a Gurudwara when the attack took place, leaving him in an injury to his right hand.
5: Jaise Badal saab pe bhi attack hua hai, Maharashtra

0: आश्रम में हमने इंसिडेंट की पूरी तस्वीरें देखी हैं। उन्होंने भी अपना ट्रीटमेंट कराया, उनको टांके भी लगे हैं, अभी भी वो गुरुग्राम के एक हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है?
1: देखिए, सबसे पहले मैं जो भी जिसने भी अटैक किया है उसकी सबसे पहले मैं निंदा करता हूं, उसकी कड़ी निंदा करता हूं। ऐसा हमारे धर्म में नहीं लिखा, ना ही ऐसा गुरुद्वारा में होना चाहिए। जितने भी गुरुद्वारा साहब हैं सब बहुत ही पवित्र स्थान है उनका, तो वहां पे ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। मैं उसकी निंदा करता हूँ। जिसने भी करी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो होनी चाहिए। और दूसरा बड़ा स्पष्ट है कि देश के लोगों के बीच में या पंजाब के लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा गुस्सा है। कि गुस्सा यह है कि जब पंजाब में अकाली दल बीजेपी की सरकार थी तो इनकी सरकार में बहुत सारे हमारे धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी हुई, और बहुत सारा नशा, बहुत सारा ड्रग जो है इनकी सरकारों में पंजाब में प्रवेश किया, तो लोगों में बहुत सारा गुस्सा है। तो मैं समझता हूँ गुस्सा निकालना किसी को चोट देके, किसी को फिजिकली हार्म करके, दिस इज नॉट गुड। ऐसा हो सकता है जब इलेक्शन आती है तो अपनी वोट के जरिए चोट करें, अपनी वोट का इस्तेमाल करके अपने गुस्से को निकालिए, पर लेकिन फिजिकल चोट करना मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी में राइट नहीं है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। तो लोगों में जो गुस्सा, उस गुस्से का ऐसा रिजल्ट है, पर लेकिन मैं इसकी निंदा करता हूँ। और दूसरा मेरी यही है कि अपने किसी के बीच में भी कोई गुस्सा हो सकता है, तो लोकतंत्र में गुस्सा निकालने के लिए अपनी, मैं समझता हूँ, बात रखने का एक प्लेटफॉर्म है, दैट इज फॉर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। आप अपनी वोट के जरिए उस सिस्टम के ऊपर चोट करिए, ना कि फिजिकल चोट करिए।
0: सर, आपने बात करी कि लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। हमने ये भी देखा था कि अकाली दल के जो अभी चुनाव हुए थे इससे पहले इलेक्शंस में, अकाली दल की उतनी सीटें नहीं है जितना उन्होंने सोचा था कि आए, वो सरकार में नहीं आए। पर ये भी एक सवाल वो पूछते हैं और वो कहते हैं कि वो मानते हैं कि ये किसी आम आदमी, किसी व्यक्ति का काम नहीं है, ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो किसी इंसाइडर का जॉब है, जिसको पता था कि सुखबीर बादल का क्या स्केड्यूल होगा, वो कहाँ पर होंगे, कौन से गुरुद्वारे में जाएंगे, वो इसे एक साजिश कहते हैं।
1: देखिए, साजिश कहते हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी साजिश के पीछे है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं समझता हूँ सुखबीर सिंह बादल जी के अकाली दल के बीजेपी के साथ अच्छे संबंध है, वहां पे जिस मर्जी से एजेंसी से जांच करवा लें, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। जब इनके ऊपर अमृतसर में हमला हुआ तो हमने विदिन समय रहते जांच करी, और चालान जो है, चार्जशीट है, वो ऑनरेबल कोर्ट में हमने दाखिल किया। तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल चाहती है कि इसकी निरपक्ष जांच हो, इसकी इंडिपेंडेंट जांच हो, कोई भी आदमी करे। पर लेकिन ये फैक्ट है कि लोगों में गुस्सा है, पर गुस्सा निकालने का ये रास्ता सही नहीं है। अहिंसा अहिंसा जो है वो कभी किसी समझता समस्या का समाधान नहीं है। आप अपनी वोट के जरिए, आप अपने इलेक्टोरल प्रोसेस के जरिए, आप अपने सिद्धांत के जरिए उस दूसरे सिद्धांत को मात दे सकते हैं। दूसरे किसी भी जो भी उन्होंने गलत काम किया उसको सजा देने के लिए और बहुत सारे मेथड है। आप वोट करिए, उनकी पार्टी के खिलाफ करिए, किसी भी पार्टी को करिए, ये उनका हक, हर एक नागरिक का अपना राइट है।
2: Moving on, let's now also tell you about the details of the attacker. The man accused of attacking Sukhbir Singh Badal has been identified. He is a 62-year-old man. His name is Jaspal Singh, a Nihang and a Sevadar at the Nanded Gurudwara, and he is now in police custody. Now, he has told the cops that he became a Nihang few years ago. The Nanded SP says that Jaspal, the attacker, had been working as a Sevadar in Nanded Gurudwara for the past 2 years. He holds a BCom and an LLB degree, but the bigger question is what drove him to attack the Akali Dal chief. Sources tell NDTV that during the questioning, Jaspal reportedly expressed anger against Badal over the drug menace in Punjab, over and even blaming him for turning the state into quote unquote Urta Punjab. The motive is still under investigation and cops are questioning the attacker Jaspal Singh for further details. Moving on, the Bar Council of India has withdrawn its controversial order barring NALSAR's 2026 law graduates from enrolling as advocates. The development comes after the Supreme Court took up the matter, with Chief Justice Suryakant calling the BCI's action totally uncalled for. The CJI said that even if students had made a wrong statement, that did not take the right to protest. The BCI has now withdrawn its pending circular and the Supreme Court has directed that no punitive action to be taken against NALSAR students over the incidents. The fact-finding inquiry by the BCI will continue.

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज POK.
0: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं. Is it fire?

0: राहुल गांधी जी के मन में प्रधानमंत्री जी के प्रति चाहे जितनी भी कुंठा भरी हो, परंतु ऐसी अभद्र टिप्पणी यह सर्वथा अस्वीकार्य है। और विशेषकर तब जबकि मोदी जी के रूप में एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के मान सम्मान को बढ़ाया और विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त किया और 12 वर्षों में पूर्ण समर्पण से काम करते हुए उन्होंने एक दिन की छुट्टी भी नहीं ली, ऐसे नेता के प्रति ऐसी अभद्र टिप्पणी हर भारतीय के मन को अंदर से कष्ट देने वाली है, पीड़ादायक है।
1: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र सबको देता है, लेकिन मर्यादाओं का उल्लंघन ये बहुत कष्टपूर्ण है। पहले संसद चलने नहीं दी, एक बात कही वो मानने को सरकार तैयार, तो दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी। और जिस ढंग से कल मैंने देखा, एक भारत के नागरिक के नाते मैं कह रहा हूँ, जो व्यवहार नेता प्रतिपक्ष ने किया वो अभारतीय है, अशोभनीय है, अलोकतांत्रिक है, मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाने वाला है। आप किसी को गले लगाते हैं और वो कह रहे हैं एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र की महिला प्रधानमंत्री जी के बारे में, ये क्या कांग्रेस को शोभा देता है? कि ये भारत के विचार है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, उनको माफी मांगनी चाहिए।
2: आचरण नेता प्रतिपक्ष और राहुल गांधी करते हैं, मैं मानता हूं कि आज का युवा पीढ़ी कभी भी उस प्रकार के आचरण और व्यवहार को कोई जगह दे ही नहीं सकता। किस प्रकार के एक देश के राष्ट्राध्यक्ष को किस प्रकार के शब्दों से आप अलंकृत करते हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि जब एक भारत की कूटनीति, भारत की डिप्लोमेसी आज पूरे विश्व में भारत का एक अलग स्थान बनाती, आज भारत का तिरंगे का सम्मान इतना बड़ा है कि जब यूक्रेन और रशिया युद्ध होता है तो भारत के तिरंगा पकड़कर एक पाकिस्तानी नागरिक भी सुरक्षित बाहर निकल सकता है। ये नए नेतृत्व का पहचान है मित्रों। आज विश्व में भारत के नेतृत्व का लोहा माना जा रहा है, भारत के गरीब के घर में किस प्रकार से विकास हो इसकी चिंता हो रही है। आज भारत के तिरंगे को सम्मान विश्व और दुनिया में मिल रहा है और उस नेतृत्वकर्ता का आप मजाक उड़ाते हैं, उस नेतृत्वकर्ता के बारे में अपमानित शब्दों का प्रयोग करते हैं। कहीं ना कहीं आज भी आपके अंदर विभाजन की मानसिकता अंदर घुसी हुई है, इस बात का परिचायक है मित्रों।
3: वी हैव स्ट्रांग टाइज विद इटली। आवर टाइज विद इटली इन रीसेंट इयर्स हैव एक्सपैंडेड एंड स्ट्रेंथेन इन एवरी विच वे, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट दैट एज पार्ट ऑफ डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस दैट वी strengthen our ties, keeping in mind and being respectful of each other, and there's mutual understanding between the two sides.
4: Moving on to other stories that we are tracking, Shiromani Akali Dal Chief Sukhbir Singh Badal has exclusively spoken to NDTV after being discharged from the hospital. He was admitted in hospital after attack on him in Nanded in Maharashtra. He said that he's not scared from any attack and that this is not the first assassination attempt on him. He also said that his father never bowed down to anti-India forces and he will also never do that. Also, an FIR has been registered in connection with the attack. The police have booked FIR under the charges of attempt to murder, assault or criminal force to deter a public servant from discharge of duty and even the Arms Act. Meanwhile, Harsimrat Kaur Badal, wife of Sukhbir Badal, has thanked the Prime Minister for inquiring about his health. She also expressed gratitude to the Prime Minister for taking immediate cognizance. The Akali Dal chief was returning from a Gurudwara when the attack took place, leaving him in an injury to his right hand.
5: जैसे बादल साहब पे भी अटैक हुआ है महाराष्ट्र में, हमने इंसिडेंट की पूरी तस्वीरें देखी हैं, उन्होंने भी अपना ट्रीटमेंट कराया, उनको टांके भी लगे हैं, अभी भी वो गुरुग्राम के एक हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है?
6: देखिए, सबसे पहले मैं जिसने भी अटैक किया है उसकी सबसे पहले मैं निंदा करता हूँ, उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। ऐसा हमारे धर्म में नहीं लिखा, ना ही ऐसा गुरुद्वारे में होना चाहिए। जितने भी गुरुद्वारा साहब हैं सब बहुत ही पवित्र स्थान है उनका, तो वहां पे ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। मैं उसकी निंदा करता हूँ, जिसने भी करी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो होनी चाहिए। और दूसरा बड़ा स्पष्ट है कि देश के लोगों के बीच में या पंजाब के लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा गुस्सा है कि गुस्सा यह है कि जब पंजाब में अकाली दल बीजेपी की

0: इस सरकार थी, तो इनकी सरकार में बहुत सारे हमारे धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी हुई, और बहुत सारा नशा, बहुत सारा ड्रग जो है इनकी सरकारों में पंजाब में प्रवेश किया, तो लोगों में बहुत सारा गुस्सा है। तो मैं समझता हूँ गुस्सा निकालना किसी को चोट देके, किसी को फिजिकली हार्म करके, दिस इज नॉट गुड। ऐसा हो सकता है जब इलेक्शन आती है तो अपनी वोट के जरिए चोट करें, अपनी वोट का इस्तेमाल करके अपने गुस्से को निकालिए, पर लेकिन फिजिकल चोट करना मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी में राइट नहीं है, डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। तो लोगों में जो गुस्सा, उस गुस्से का ऐसा रिजल्ट है, पर लेकिन मैं इसकी निंदा करता हूं। और दूसरा मेरी यही है कि अपने किसी के बीच में भी कोई गुस्सा हो सकता है, तो लोकतंत्र में गुस्सा निकालने के लिए अपनी, मैं समझता हूँ, बात रखने का एक प्लेटफॉर्म है, दैट इज फॉर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। आप अपनी वोट के जरिए उस सिस्टम के ऊपर चोट करिए, ना कि फिजिकल चोट करिए।
1: सर, आपने बात करी कि लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। हमने ये भी देखा था कि अकाली दल के जो अभी चुनाव हुए थे इससे पहले इलेक्शंस में, अकाली दल की उतनी सीटें नहीं है जितना उन्होंने सोचा था कि आए, वो सरकार में नहीं आए। पर ये भी एक सवाल वो पूछते हैं और वो कहते हैं कि वो मानते हैं कि ये किसी आम आदमी, किसी व्यक्ति का काम नहीं है, ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो किसी इनसाइडर का जॉब है, जिसको पता था कि सुखबीर बादल का क्या स्केड्यूल होगा, वो कहाँ पर होंगे, कौन से गुरुद्वारे में जाएंगे, वो इसे एक साजिश कहते हैं।
0: देखिए, साजिश कहते हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए, जो भी साजिश के पीछे है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं समझता हूँ सुखबीर सिंह बादल जी के अकाली दल के बीजेपी के साथ अच्छे संबंध है, वहां पे जिस मर्जी से एजेंसी से जांच करवा लें, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। जब इनके ऊपर अमृतसर में हमला हुआ तो हमने विदिन समय रहते जांच करी, और चालान जो है, चार्जशीट है, वो ऑनरेबल कोर्ट में हमने दाखिल किया। तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल चाहती है कि इसकी निरपक्ष जांच हो, इसकी इंडिपेंडेंट जांच हो, कोई भी आदमी करे। पर लेकिन ये फैक्ट है कि लोगों में गुस्सा है, पर गुस्सा निकालने का ये रास्ता सही नहीं है। अहिंसा हिंसा जो है वो कभी किसी समझता समस्या का समाधान नहीं है। आप अपनी वोट के जरिए, आप अपने इलेक्टोरल प्रोसेस के जरिए, आप अपने सिद्धांत के जरिए उस दूसरे सिद्धांत को मात दे सकते हैं। दूसरे किसी भी जो भी उन्होंने गलत काम किया उसको सजा देने के लिए और बहुत सारे मेथड है। आप वोट करिए, उनकी पार्टी के खिलाफ करिए, किसी भी पार्टी को करिए, ये उनका हक, हर एक नागरिक का अपना राइट है।
2: Moving on, let's now also tell you about the details of the attacker. The man accused of attacking Sukhbir Singh Badal has been identified. He is a 62-year-old man. His name is Jaspal Singh, a Nihang and a Sevadar at the Nanded Gurudwara, and he is now in police custody. Now, he has told the cops that he became a Nihang few years ago. The Nanded SP says that Jaspal, the attacker, had been working as a Sevadar in Nanded Gurudwara for the past 2 years. He holds a BCom and an LLB degree, but the bigger question is what drove him to attack the Akali Dal chief. Sources tell NDTV that during the questioning, Jaspal reportedly expressed anger against Badal over the drug menace in Punjab, over and even blaming him for turning the state into quote unquote Urta Punjab. The motive is still under investigation, and cops are questioning the attacker Jaspal Singh for further details. Moving on, the Bar Council of India has withdrawn its controversial order barring Nalsar's 2026 law graduates from enrolling as advocates. The development comes after the Supreme Court took up the matter, with Chief Justice Suryakant calling the BCI's action totally uncalled for. The CJI said that even if students had made a wrong statement, that did not take the right to protest. The BCI has now withdrawn its pending circular, and the Supreme Court has directed that no punitive action to be taken against Nalsar students over the incidents. The fact-finding inquiry by the BCI will continue. Meanwhile, all 2026 graduates are free to seek enrollment with the State Bar Council of their choice. Now, CJI Kant has also urged the students to enroll and join the Supreme Court Bar. We have some reactions coming in on that story. Let's listen in.
3: Such kind of act.
4: BCI chairman is behaving like the BCI is his personal property. When he issues an order or issues a letter or issues a direction, he does not even refer to under which provision of the act or the regulation he is making such kind of an order. BCI doesn't have some overarching power as if he is the Shahenshah of the advocacy regulation in this country. He is merely a statutory body. I don't know how he is continuing for more than 12 years. Even president of Supreme Court bar can do only 4 terms, that is 4 years, but he has continued for more than 12 years.

0: कल मैंने देखा, एक भारत के नागरिक के नाते मैं कह रहा हूं, जो व्यवहार नेता प्रतिपक्ष ने किया वो अभारतीय है, अशोभनीय है, अलोकतांत्रिक है, मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाने वाला है। आप किसी को गले लगाते हैं और वो कह रहे हैं एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र की महिला प्रधानमंत्री जी के बारे में, ये क्या कांग्रेस को शोभा देता है? क्या ये भारत के विचार है? मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, उनको माफी मांगनी चाहिए।
1: आचरण नेता प्रतिपक्ष और राहुल गांधी करते हैं, मैं मानता हूं कि आज का युवा पीढ़ी कभी भी उस प्रकार के आचरण और व्यवहार को कोई जगह दे ही नहीं सकता। किस प्रकार के एक देश के राष्ट्राध्यक्ष को किस प्रकार के शब्दों से आप अलंकृत करते हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि जब एक भारत की कूटनीति, भारत की डिप्लोमेसी आज पूरे विश्व में भारत का एक अलग स्थान बनाती है। आज भारत का तिरंगे का सम्मान इतना बड़ा है कि जब यूक्रेन और रशिया युद्ध होता है तो भारत के तिरंगा पकड़कर एक पाकिस्तानी नागरिक भी सुरक्षित बाहर निकल सकता है। ये नए नेतृत्व का पहचान है मित्रों। आज विश्व में भारत के नेतृत्व का लोहा माना जा रहा है। भारत के गरीब के घर में किस प्रकार से विकास हो, इसकी चिंता हो रही है। आज भारत के तिरंगे को सम्मान विश्व और दुनिया में मिल रहा है और उस नेतृत्वकर्ता का आप मजाक उड़ाते हैं, उस नेतृत्वकर्ता के बारे में अपमानित शब्दों का प्रयोग करते हैं। कहीं ना कहीं आज भी आपके अंदर विभाजन की मानसिकता अंदर घुसी हुई है, इस बात का परिचायक है मित्रों।
2: We have strong ties with Italy. Our ties with Italy in recent years have expanded and strengthened in every which way. And it's important that as part of diplomatic practice that we strengthen our ties, keeping in mind and being respectful of each other, and there's mutual understanding between the two sides.
3: Moving on to other stories that we are tracking, Shiromani Akali Dal Chief Sukhbir Singh Badal has exclusively spoken to NDTV after being discharged from the hospital. He was admitted in hospital after attack on him in Nanded in Maharashtra. He said that he's not scared from any attack and that this is not the first assassination attempt on him. He also said that his father never bowed down to anti-India forces and he will also never do that. Also, an FIR has been registered in connection with the attack. The police have booked FIR under the charges of attempt to murder, assault or criminal force to deter a public servant from discharge of duty and even the Arms Act. Meanwhile, Harsimrat Kaur Badal, wife of Sukhbir Badal, has thanked the Prime Minister for inquiring about his health. She also expressed gratitude to the Prime Minister for taking immediate cognizance. The Akali Dal chief was returning from a Gurudwara when the attack took place, leaving him in an injury to his right hand.
4: जैसे बादल साहब पे भी अटैक हुआ है महाराष्ट्र में, हमने इंसिडेंट की पूरी तस्वीरें देखी हैं, उन्होंने भी अपना ट्रीटमेंट कराया, उनको टांके भी लगे हैं, अभी भी वो गुरुग्राम के एक हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है?
5: देखिए, सबसे पहले मैं जो भी जिसने भी अटैक किया है उसकी सबसे पहले मैं निंदा करता हूँ, उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। ऐसा हमारे धर्म में नहीं लिखा, ना ही ऐसा गुरुद्वारा में होना चाहिए। जितने भी गुरुद्वारा साहब हैं सब बहुत ही पवित्र स्थान है उनका, तो वहां पे ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। मैं उसकी निंदा करता हूँ, जिसने भी करी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो होनी चाहिए। और दूसरा बड़ा स्पष्ट है कि देश के लोगों के बीच में या पंजाब के लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा गुस्सा है कि गुस्सा यह है कि जब पंजाब में अकाली दल बीजेपी की सरकार थी तो इनकी सरकार में बहुत सारे हमारे धार्मिक ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी हुई और बहुत सारा ड्रग जो है इनकी सरकारों में पंजाब में प्रवेश किया, तो लोगों में बहुत सारा गुस्सा है। तो मैं समझता हूँ गुस्सा निकालना किसी को चोट देके, किसी को फिजिकली हार्म करके, दिस इज नॉट गुड। ऐसा हो सकता है जब इलेक्शन आती है तो अपनी वोट के जरिए चोट करें, अपनी वोट का इस्तेमाल करके अपने गुस्से को निकालिए, पर लेकिन फिजिकल चोट करना मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी में राइट नहीं है, डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। तो लोगों में जो गुस्सा, उस गुस्से का ऐसा रिजल्ट है, पर लेकिन मैं इसकी निंदा करता हूं। और दूसरा मेरी यही है कि अपने किसी के बीच में भी कोई गुस्सा हो सकता है, तो लोकतंत्र में गुस्सा निकालने के लिए अपनी, मैं समझता हूं, बात रखने का एक प्लेटफॉर्म है, दैट इज फॉर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। आप अपनी वोट के जरिए उस सिस्टम के ऊपर चोट करिए, ना कि फिजिकल चोट करिए।

0: right from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
1: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगाकर शिकार करते हैं।
2: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशंस थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
3: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
4: पुशअप चैलेंज किया जाए? 28, 29, 30।
5: तंबी कैसे? टाइगर

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
1: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal. What's that today?
0: The show that sets the prime time agenda.
1: We'll be deep diving into this topic to tell you what's that today.
0: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
2: Launch control, 0 to 100.
3: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
4: This car makes no sense, yet it makes every sense.
5: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
6: Hello and welcome. You're watching NDTV with me, Tanisha Awasthi. Let's get you the headlines that we're tracking at this hour. Startling new details have now emerged from the Air India Phuket Delhi flight incident. Airbus's initial analysis of the aircraft's flight data shows that the flight in question briefly lost its elevators for around 4 seconds. The pilot's input initially produced no direct response from the flight controls. The Lok Sabha Committee of Privileges has issued a notice to Leader of Opposition Rahul Gandhi seeking his reply by the August 28. The complaint alleges that Gandhi used unparliamentary and derogatory language and made serious allegations against the Home Minister during the Lok Sabha debate. Defence Minister Rajnath Singh has criticised Rahul Gandhi over his recent jibe at Prime Minister Narendra Modi's foreign policy outreach. Rajnath has called Rahul Gandhi's remarks and conduct extremely low level. The Supreme Court has strongly criticised the Bar Council of India over its now withdrawn directive seeking to halt enrolment of NALSAR's 2026 graduates following a student campaign over Chief Justice Surya Kant's proposed participation in the university's convocation. The CJI said students have a right to protest and question BCI's intervention. On the cockroach remark, Chief Justice of India Surya Kant has said that his remarks were misquoted and misused with portions of courtroom proceedings circulated without context. He called it a malicious attempt to mislead the youth. And we're starting this edition with the breaking news that's just coming in. The Lok Sabha Committee of Privileges has issued a notice to the Leader of Opposition, Rahul Gandhi, asking him to resubmit his reply by August 28. The notice relates to a privileged complaint that's been filed by BJP MP Anurag Thakur over the alleged unparliamentary and derogatory remarks that were used against the Home Minister Amit Shah during the debate on Public Examination Amendment Bill. The BJP MP Dr. Sanjay Jaiswal's complaint and the alleged remarks is also a part of the matter. So it seems trouble is only mounting for Rahul Gandhi. Aishwarya is joining me for more details on this. Yes, Aishwarya, what more details do you have as far as the privileged motion against the Leader of Opposition is concerned?
7: Well, there were two separate complaints of breach of privilege filed by BJP MPs Anurag Thakur and Sanjay Jaiswal for Leader of Opposition Rahul Gandhi's remark against Home Minister Amit Shah during the debate on the anti-paper leak bill. The Secretariat now have asked Rahul Gandhi to submit his response to the allegations against him by August 28. Now, remember, it was stated by Sanjay Jaiswal, the Chief Whip, and the BJP MP who filed a privilege complaint stating that the remarks that were made by Congress leader were unparliamentary, and in his complaint, he has sought that he had stated that Rahul Gandhi, under the rules of procedure, in his letter on July 29 to Lok Sabha Speaker Om Birla, has referred the complaint to Privilege Committee of the House. By August 28, Rahul Gandhi had to submit his replies to the Lok Sabha Secretariat. And also, remember, on July 30th, it was Anurag Thakur who accused Rahul Gandhi of using unparliamentary and derogatory language and claimed that Rahul Gandhi leveled grave allegations against the Home Minister during the debate. Remember, there was a huge political war of words that erupted soon after Rahul Gandhi made that speech, and two separate complaints were filed. It remains to be seen that how Rahul Gandhi will be responding to the complaint that has been filed by two MPs of Bharatiya Janata Party, or whether this will go to Privilege Committee and will seek a response from Mr. Gandhi.
6: All right. Thank you very much for getting us those details, Aishwarya. Moving on now in the broadcast. Well, Congress seems to be having a double whammy with the party facing a sexism storm after Rahul Gandhi and Sandeep Dixit's controversial Melanie jibe at Delhi convention. The exchange has now triggered a fresh political row, with the BJP accusing Congress leaders of making a vulgar reference to Melanie. BJP has slammed the remarks as vulgar, accusing Congress leaders of targeting the Italian Prime Minister Giorgia Meloni. Now, JP Nadda has called Rahul Gandhi's conduct a misfortune for country's democracy, saying having an opposition leader like this was distressing. The BJP says the remarks are not only sexist but could also risk India-Italy ties. The backlash is mounting, with BJP leaders accusing Rahul Gandhi of cheap tactics and disrespect towards women. The Congress, meanwhile, has hit back, raising several remarks made by the BJP in the past, including by the Prime Minister himself.
8: एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ. मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था.
9: I have not reached there yet.
8: एक चीज पूछ सकता हूँ?
9: हाँ.
8: मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था.
9: I have not reached there yet.
8: एक चीज पूछ सकता हूँ?
9: हाँ.
8: मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था.
9: I have not reached there yet.
10: कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं भारत की विदेश नीति के प्रति जो टिप्पणी की है वो अत्यंत निम्न स्तरीय और निंदाजनक तो है ही, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही पीड़ा देने वाली भी है, क्योंकि अपने लंबे राजनीतिक जीवन में मैंने किसी भी नेता प्रतिपक्ष को, चाहे वो सुषमा जी व अरुण जेटली जी रहे हों, अथवा अटल जी और आडवाणी जी रहे हों, अथवा अटल जी की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी रही हों, ऐसा अशोभनीय आचरण यह कल्पना से परे था. और ऐसा आचरण भारत में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मैं मानता हूं कि एक गंभीर खतरे का संकेत है. राहुल गांधी जी के मन में प्रधानमंत्री जी के प्रति चाहे जितनी भी कुंठा भरी हो, परंतु ऐसी अभद्र टिप्पणी यह सर्वथा अस्वीकार्य है. और विशेषकर तब, जबकि मोदी जी के रूप में एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के मान सम्मान को बढ़ाया और विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त किया, और 12 वर्षों में पूर्ण समर्पण से काम करते हुए उन्होंने एक दिन की छुट्टी भी नहीं ली, ऐसे नेता के प्रति ऐसी अभद्र टिप्पणी हर भारतीय के मन को अंदर से कष्ट देने वाली है, पीड़ादायक है.
11: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र सबको देता है, लेकिन मर्यादाओं का उल्लंघन ये बहुत कष्टपूर्ण है. पहले संसद चलने नहीं दी, एक बात कही वो मानने को सरकार तैयार, तो दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी. और जिस ढंग से कल मैंने देखा, एक भारत के नागरिक के नाते मैं कह रहा हूँ, जो व्यवहार नेता प्रतिपक्ष ने किया वो अभारतीय है, अशोभनीय है, अलोकतांत्रिक है, मर्यादाओं की धज्जियाँ उड़ाने वाला है. आप किसी को गले लगाते हैं और वो कह रहे हैं एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र की महिला प्रधानमंत्री जी के बारे में, ये क्या कांग्रेस को शोभा देता है? क्या ये भारत के विचार है? मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, उनको माफी मांगनी चाहिए.
12: आचरण नेता प्रतिपक्ष और राहुल गांधी करते हैं, मैं मानता हूं कि आज का युवा पीढ़ी कभी भी उस प्रकार के आचरण और व्यवहार को कोई जगह दे ही नहीं सकता. किस प्रकार के एक देश के राष्ट्राध्यक्ष को किस प्रकार के शब्दों से आप अलंकृत करते हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि जब एक भारत की कूटनीति, भारत की डिप्लोमेसी आज पूरे विश्व में भारत का एक अलग स्थान बनाती, आज भारत का तिरंगे का सम्मान इतना बड़ा है कि जब यूक्रेन और रशिया युद्ध होता है तो भारत के तिरंगा पकड़कर एक पाकिस्तानी नागरिक भी सुरक्षित बाहर निकल सकता है, ये नए नेतृत्व का पहचान है मित्रों. आज विश्व में भारत के नेतृत्व का लोहा माना जा रहा है, भारत के गरीब के घर में किस प्रकार से विकास हो इसकी चिंता हो रही है. आज भारत के तिरंगे को सम्मान विश्व और दुनिया में मिल रहा है. और उस नेतृत्वकर्ता का आप मजाक उड़ाते हैं, उस नेतृत्वकर्ता के बारे में अपमानित शब्दों का प्रयोग करते हैं। कहीं ना कहीं आज भी आपके अंदर विभाजन की मानसिकता अंदर घुसी हुई है, इस बात का परिचायक है मित्रों।
13: We have strong ties with Italy. Our ties with Italy in recent years have expanded and strengthened in every which way, and it's important that as part of diplomatic practice that we strengthen our ties, keeping in mind and being respectful of each other, and there's mutual understanding between the two sides.
6: Moving on to other stories that we are tracking, Shiromani Akali Dal Chief Sukhbir Singh Badal has exclusively spoken to NDTV after being discharged from the hospital. He was admitted in hospital after attack on him in Nanded in Maharashtra. He said that he's not scared from any attack and that this is not the first assassination attempt on him. He also said that his father never bowed down to anti-India forces and he will also never do that. Also, an FIR has been registered in connection with the attack. The police have booked FIR under the charges of attempt to murder, assault, or criminal force to deter a public servant from discharge of duty, and even the Arms Act. Meanwhile, Harsimrat Kaur Badal, wife of Sukhbir Badal, has thanked the Prime Minister for inquiring about his health. She also expressed gratitude to the Prime Minister for taking immediate cognizance. The Akali Dal chief was returning from a Gurudwara when the attack took place, leaving him in an injury to his right hand.
14: जैसे बादल साहब पे भी अटैक हुआ है महाराष्ट्र में, हमने इंसिडेंट की पूरी तस्वीरें देखी हैं, उन्होंने भी अपना ट्रीटमेंट कराया, उनको टांके भी लगे हैं, अभी भी वो गुरुग्राम के एक हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है?
15: देखिए, सबसे पहले मैं जो भी जिसने भी अटैक किया है उसकी सबसे पहले मैं निंदा करता हूँ, उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। ऐसा हमारे धर्म में नहीं लिखा, ना ही ऐसा गुरुद्वारा में होना चाहिए। जितने भी गुरुद्वारा साहब हैं सब बहुत ही पवित्र स्थान है उनका, तो वहां पे ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। मैं उसकी निंदा करता हूँ, जिसने भी करी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो होनी चाहिए। और दूसरा बड़ा स्पष्ट है कि देश के लोगों के बीच में या पंजाब के लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा गुस्सा है, कि गुस्सा यह है कि जब पंजाब में अकाली दल बीजेपी की सरकार थी तो इनकी सरकार में बहुत सारे हमारे धार्मिक ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी हुई और बहुत सारा ड्रग जो है इनकी सरकारों में पंजाब में प्रवेश किया, तो लोगों में बहुत सारा गुस्सा है। तो मैं समझता हूँ गुस्सा निकालना किसी को चोट देके, किसी को फिजिकली हार्म करके, दिस इज नॉट गुड। ऐसा हो सकता है जब इलेक्शन आती है तो अपनी वोट के जरिए चोट करें, अपनी वोट का इस्तेमाल करके अपने गुस्से को निकालिए, पर लेकिन फिजिकल चोट करना मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी में राइट नहीं है, डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। तो लोगों में जो गुस्सा, उस गुस्से का ऐसा रिजल्ट है, पर लेकिन मैं इसकी निंदा करता हूं। और दूसरा मेरी यही है कि अपने किसी के बीच में भी कोई गुस्सा हो सकता है, तो लोकतंत्र में गुस्सा निकालने के लिए अपनी, मैं समझता हूं, बात रखने का एक प्लेटफॉर्म है, दैट इज फॉर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। आप अपनी वोट के जरिए उस सिस्टम के ऊपर चोट करिए, ना कि फिजिकल चोट करिए।
14: सर, आपने बात करी कि लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है, हमने ये भी देखा था कि अकाली दल के जो अभी चुनाव हुए थे इससे पहले इलेक्शंस में, अकाली दल की उतनी सीटें नहीं है जितना उन्होंने सोचा था कि आए, वो सरकार में नहीं आए। पर ये भी एक सवाल वो पूछते हैं और वो कहते हैं कि वो मानते हैं कि ये किसी आम आदमी, किसी व्यक्ति का काम नहीं है, ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो किसी इंसाइडर का जॉब है, जिसको पता था कि सुखबीर बादल का क्या स्केड्यूल होगा, वो कहाँ पे होंगे, कौन से गुरुद्वारे में जाएंगे, वो इसे एक साजिश कहते हैं।
15: देखिए, साजिश कहते हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए, जो भी साजिश के पीछे है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं समझता हूँ सुखबीर सिंह बादल जी के अकाली दल के बीजेपी के साथ अच्छे संबंध है, वहां पे जिस मर्जी से एजेंसी से जांच करवा लें, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। जब इनके ऊपर अमृतसर में हमला हुआ तो हमने विदिन समय रहते जांच करी और चालान जो है, चार्जशीट है, वो ऑनरेबल कोर्ट में हमने दाखिल किया। तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल चाहती है कि इसकी निरपक्ष जांच हो, इसकी इंडिपेंडेंट जांच हो, कोई भी आदमी करे, पर लेकिन ये फैक्ट है कि लोगों में गुस्सा है, पर गुस्सा निकालने का ये रास्ता सही नहीं है। अहिंसा जो है वो कभी किसी समस्या का समाधान नहीं है। आप अपनी वोट के जरिए, आप अपने इलेक्टोरल प्रोसेस के जरिए, आप अपने सिद्धांत के जरिए उस दूसरे सिद्धांत को मात दे सकते हैं, दूसरे किसी भी जो भी उन्होंने गलत काम किया उसको सजा देने के लिए और बहुत सारे मेथड है। आप वोट करिए, उनकी पार्टी के खिलाफ करिए, किसी भी पार्टी को करिए, ये उनका हक, हर एक नागरिक का अपना राइट है।
6: Moving on, let's now also tell you about the details of the attacker. The man accused of attacking Sukhbir Singh Badal has been identified. He is a 62-year-old man. His name is Jaspal Singh, a Nihang and a Sevadar at the Nanded Gurudwara, and he is now in police custody. Now, he has told the cops that he became a Nihang few years ago. The Nanded SP says that Jaspal, the attacker, had been working as a Sevadar in Nanded Gurudwara for the past 2 years. He holds a BCom and an LLB degree, but the bigger question is what drove him to attack the Akali Dal chief. Sources tell NDTV that during the questioning, Jaspal reportedly expressed anger against Badal over the drug menace in Punjab, over and even blaming him for turning the state into quote-unquote Urta Punjab. The motive is still under investigation and cops are questioning the attacker Jaspal Singh for further details. Moving on, the Bar Council of India has withdrawn its controversial order barring NALSAR's 2026 law graduates from enrolling as advocates. The development comes after the Supreme Court took up the matter, with Chief Justice Suryakant calling the BCI's action totally uncalled for. The CJI said that even if students had made a wrong statement, that did not take the right to protest. The BCI has now withdrawn its pending circular and the Supreme Court has directed that no punitive action to be taken against NALSAR students over the incidents. The fact-finding inquiry by the BCI will continue. Meanwhile, all 2026 graduates are free to seek enrollment with the State Bar Council of their choice. Now, CJI Kant has also urged the students to enroll and join the Supreme Court Bar. We have some reactions coming in on that story. Let's listen in.
16: Such kind of act.
17: BCI chairman is behaving like the BCI is his personal property. When he issues an order or issues a letter or issues a direction, he does not even refer to under which provision of the act or the regulation he is making such kind of an order. BCI doesn't have some overarching power as if he is the shahenshah of the advocacy regulation in this country. He is merely a statutory body. I don't know how he is continuing for more than 12 years. Even president of Supreme Court Bar can do only 4 terms, that is 4 years, but he has continued for more than 12 years. But obviously, the reason is quite obvious, because this 12 years has given him the Raj Sabha seat also.
18: Students of NALSAR are being misguided and misled by certain elements in

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
1: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगाकर शिकार करते हैं।
2: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशंस थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
3: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
4: पुशअप चैलेंज किया जाए? 28, 29, 30.
5: तम्बी कैसे? टाइगर

0: उस नेतृत्वकर्ता के बारे में अपमानित शब्दों का प्रयोग करते हैं। कहीं ना कहीं आज भी आपके अंदर विभाजन की मानसिकता अंदर घुसी हुई है, इस बात का परिचायक है मित्रों।
1: वी हैव स्ट्रॉन्ग टाइज विद इटली। Our ties with Italy in recent years have expanded and strengthened in every which way, and it's important that as part of diplomatic practice that we strengthen our ties, keeping in mind and being respectful of each other, and there's mutual understanding between the two sides.
2: Moving on to other stories that we are tracking, Shiromani Akali Dal Chief Sukhbir Singh Badal has exclusively spoken to NDTV after being discharged from the hospital. He was admitted in hospital after attack on him in Nanded in Maharashtra. He said that he's not scared from any attack and that this is not the first assassination attempt on him. He also said that his father never bowed down to anti-India forces and he will also never do that. Also, an FIR has been registered in connection with the attack. The police have booked FIR under the charges of attempt to murder, assault or criminal force to deter a public servant from discharge of duty and even the Arms Act. Meanwhile, Harsimrat Kaur Badal, wife of Sukhbir Badal, has thanked the Prime Minister for inquiring about his health. She also expressed gratitude to the Prime Minister for taking immediate cognizance. The Akali Dal chief was returning from a Gurudwara when the attack took place, leaving him in an injury to his right hand.
3: जैसे बादल साहब पे भी अटैक हुआ है महाराष्ट्र में, हमने इंसिडेंट की पूरी तस्वीरें देखी हैं, उन्होंने भी अपना ट्रीटमेंट कराया, उनको टांके भी लगे हैं, अभी भी वो गुरुग्राम के एक हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है?
4: देखिए, सबसे पहले मैं जो भी जिसने भी अटैक किया है उसकी सबसे पहले मैं निंदा करता हूँ, उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। ऐसा हमारे धर्म में नहीं लिखा, ना ही ऐसा गुरुद्वारा में होना चाहिए। जितने भी गुरुद्वारा साहब हैं सब बहुत ही पवित्र स्थान है उनका, तो वहां पे ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। मैं उसकी निंदा करता हूँ, जिसने भी करी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो होनी चाहिए। और दूसरा बड़ा स्पष्ट है कि देश के लोगों के बीच में या पंजाब के लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा गुस्सा है कि गुस्सा यह है कि जब पंजाब में अकाली दल बीजेपी की सरकार थी तो इनकी सरकार में बहुत सारे हमारे धार्मिक ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी हुई और बहुत सारा नशा, बहुत सारा ड्रग जो है इनकी सरकारों में पंजाब में प्रवेश किया, तो लोगों में बहुत सारा गुस्सा है। तो मैं समझता हूँ गुस्सा निकालना किसी को चोट देके, किसी को फिजिकली हार्म करके, दिस इज नॉट गुड। ऐसा हो सकता है जब इलेक्शन आती है तो अपनी वोट के जरिए चोट करें, अपनी वोट का इस्तेमाल करके अपने गुस्से को निकालिए, पर लेकिन फिजिकल चोट करना मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी में राइट नहीं है, डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। तो लोगों में जो गुस्सा, उस गुस्से का ऐसा रिजल्ट है, पर लेकिन मैं इसकी निंदा करता हूं। और दूसरा मेरी यही है कि अपने किसी के बीच में भी कोई गुस्सा हो सकता है, तो लोकतंत्र में गुस्सा निकालने के लिए अपनी, मैं समझता हूं, बात रखने का एक प्लेटफॉर्म है, दैट इज फॉर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। आप अपनी वोट के जरिए उस सिस्टम के ऊपर चोट करिए, ना कि फिजिकल चोट करिए।
3: सर, आपने बात करी कि लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है, हमने ये भी देखा था कि अकाली दल के जो अभी चुनाव हुए थे इससे पहले इलेक्शंस में, अकाली दल की उतनी सीटें नहीं है जितना उन्होंने सोचा था कि आए, वो सरकार में नहीं आए। पर ये भी एक सवाल वो पूछते हैं, वो कहते हैं कि वो मानते हैं कि ये किसी आम आदमी, किसी व्यक्ति का काम नहीं है, ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो किसी इनसाइडर का जॉब है, जिसको पता था कि सुखबीर बादल का क्या स्केड्यूल होगा, वो कहाँ पे होंगे, कौन से गुरुद्वारे में जाएंगे, वो इसे एक साजिश कहते हैं।
4: देखिए, साजिश कहते हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए, जो भी साजिश के पीछे है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं समझता हूँ सुखबीर सिंह बादल जी के अकाली दल के बीजेपी के साथ अच्छे संबंध है, वहां पे जिस मर्जी से एजेंसी से जांच करवा लें, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। जब इनके ऊपर अमृतसर में हमला हुआ तो हमने विदिन समय रहते जांच करी और चालान जो है, चार्जशीट है, वो ऑनरेबल कोर्ट में हमने दाखिल किया। तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल चाहती है कि इसकी निरपक्ष जांच हो, इसकी इंडिपेंडेंट जांच हो, कोई भी आदमी करे, पर लेकिन ये फैक्ट है कि लोगों में गुस्सा है, पर गुस्सा निकालने का ये रास्ता सही नहीं है। हिंसा जो है वो कभी किसी समस्या का समाधान नहीं है। आप अपनी वोट के जरिए, आप अपने इलेक्टोरल प्रोसेस के जरिए, आप अपने सिद्धांत के जरिए उस दूसरे सिद्धांत को मात दे सकते हैं, दूसरे किसी भी जो भी उन्होंने गलत काम किया उसको सजा देने के लिए और बहुत सारे मेथड है। आप वोट करिए, उनकी पार्टी के खिलाफ करिए, किसी भी पार्टी को करिए, ये उनका हर एक नागरिक का अपना राइट है।

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज POK।
0: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: और
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: चलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था।
1: I have not reached there yet.
0: एक चीज पूछ सकता हूँ?
1: हाँ।
0: मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था।
1: I have not reached there yet.
0: एक चीज पूछ सकता हूँ?
1: हाँ।
0: मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था।
1: I have not reached there yet.
2: कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं भारत की विदेश नीति के प्रति जो टिप्पणी की है वो अत्यंत निम्नस्तरीय और निंदाजनक तो है ही, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही पीड़ा देने वाली भी है, क्योंकि अपने लंबे राजनीतिक जीवन में मैंने किसी भी नेता प्रतिपक्ष को, चाहे वो सुषमा जी व अरुण जेटली जी रहे हों अथवा अटल जी और आडवाणी जी रहे हों अथवा अटल जी की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी रही हों, ऐसा अशोभनीय आचरण यह कल्पना से परे था। और ऐसा आचरण भारत में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मैं मानता हूं कि एक गंभीर खतरे का संकेत है। राहुल गांधी जी के मन में प्रधानमंत्री जी के प्रति चाहे जितनी भी कुंठा भरी हो, परंतु ऐसी अभद्र टिप्पणी यह सर्वथा अस्वीकार्य है, और विशेषकर तब जबकि मोदी जी के रूप में एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के मान सम्मान को बढ़ाया और विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त किया, और 12 वर्षों में पूर्ण समर्पण से काम करते हुए उन्होंने एक दिन की छुट्टी भी नहीं ली, ऐसे नेता के प्रति ऐसी अभद्र टिप्पणी हर भारतीय के मन को अंदर से कष्ट देने वाली है, पीड़ादायक है।
3: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र सबको देता है, लेकिन मर्यादाओं का उल्लंघन ये बहुत कष्टपूर्ण है। पहले संसद चलने नहीं दी, एक बात कही वो मानने को सरकार तैयार, तो दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी, और जिस ढंग से कल मैंने देखा, एक भारत के नागरिक के नाते मैं कह रहा हूँ, जो व्यवहार नेता प्रतिपक्ष ने किया वो अभारतीय है, अशोभनीय है, अलोकतांत्रिक है, मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाने वाला है। आप किसी को गले लगाते हैं और वो कह रहे हैं एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र की महिला प्रधानमंत्री जी के बारे में, ये क्या कांग्रेस को शोभा देता है? कि ये भारत के विचार है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, उनको माफी मांगनी चाहिए।
4: आचरण नेता प्रतिपक्ष और राहुल गांधी करते हैं, मैं मानता हूं कि आज का युवा पीढ़ी कभी भी उस प्रकार के आचरण और व्यवहार को कोई जगह दे ही नहीं सकता। किस प्रकार के एक देश के राष्ट्राध्यक्ष को किस प्रकार के शब्दों से आप अलंकृत करते हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि जब एक भारत की कूटनीति, भारत की डिप्लोमेसी आज पूरे विश्व में भारत का एक अलग स्थान बनाती है। आज भारत का तिरंगे का सम्मान इतना बड़ा है कि जब यूक्रेन और रशिया युद्ध होता है तो भारत के तिरंगा पकड़कर एक पाकिस्तानी नागरिक भी सुरक्षित बाहर निकल सकता है। ये नए नेतृत्व का पहचान है मित्रों। आज विश्व में भारत के नेतृत्व का लोहा माना जा रहा है। भारत के गरीब के घर में किस प्रकार से विकास हो इसकी चिंता हो रही है। आज भारत के तिरंगे को सम्मान विश्व और दुनिया में मिल रहा है, और उस नेतृत्वकर्ता का आप मजाक उड़ाते हैं, उस नेतृत्वकर्ता के बारे में अपमानित शब्दों का प्रयोग करते हैं। कहीं ना कहीं आज भी आपके अंदर विभाजन की मानसिकता अंदर घुसी हुई है, इस बात का परिचायक है मित्रों।
5: वी हैव स्ट्रांग टाइज विद इटली। आवर टाइज विद इटली इन रीसेंट ईयर्स हैव एक्सपैंडेड एंड स्ट्रेंथेंड इन एवरी विच वे, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट दैट एज पार्ट ऑफ डिप्लोमैटिक प्रैक्टिस दैट वी स्ट्रेंथन आवर टाइज, कीपिंग इन माइंड एंड बींग रिस्पेक्टफुल ऑफ ईच अदर एंड दिस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू साइड्स।
6: Moving on to other stories that we are tracking, Shiromani Akali Dal Chief Sukhbir Singh Badal has exclusively spoken to NDTV after being discharged from the hospital. He was admitted in hospital after attack on him in Nanded in Maharashtra. He said that he's not scared from any attack and that this is not the first assassination attempt on him. He also said that his father never bowed down to anti-India forces and he will also never do that. Also, an FIR has been registered in connection with the attack. The police have booked FIR under the charges of attempt to murder, assault, court or criminal force to deter a public servant from discharge of duty and even the Arms Act. Meanwhile, Harsimrat Kaur Badal, wife of Sukhbir Badal, has thanked the Prime Minister for inquiring about his health. She also expressed gratitude to the Prime Minister for taking immediate cognizance. The Akali Dal chief was returning from a Gurudwara when the attack took place, leaving him in an injury to his right hand.
7: जैसे बादल साहब पे भी अटैक हुआ है महाराष्ट्र में, हमने इंसिडेंट की पूरी तस्वीरें देखी हैं. उन्होंने भी अपना ट्रीटमेंट कराया, उनको टांके भी लगे हैं. अभी भी वो गुरुग्राम के एक हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं. इस पर आपका क्या कहना है?
8: देखिए, सबसे पहले मैं जो भी जिसने भी अटैक किया है उसकी सबसे पहले मैं निंदा करता हूँ, उसकी कड़ी निंदा करता हूँ. ऐसा हमारे धर्म में नहीं लिखा, ना ही ऐसा गुरुद्वारा में होना चाहिए. जितने भी गुरुद्वारा साहब हैं सब बहुत ही पवित्र स्थान है उनका, तो वहां पे ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए. मैं उसकी निंदा करता हूं. जिसने भी करी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो होनी चाहिए. और दूसरा बड़ा स्पष्ट है कि देश के लोगों के बीच में या पंजाब के लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा गुस्सा है. कि गुस्सा यह है कि जब पंजाब में अकाली दल बीजेपी की सरकार थी तो इनकी सरकार में बहुत सारे हमारे धार्मिक ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी हुई और बहुत सारा नशा, बहुत सारा ड्रग जो है इनकी सरकारों में पंजाब में प्रवेश किया, तो लोगों में बहुत सारा गुस्सा है. तो मैं समझता हूँ गुस्सा निकालना किसी को चोट देके, किसी को फिजिकली हार्म करके, दिस इज नॉट गुड. ऐसा हो सकता है जब इलेक्शन आती है तो अपनी वोट के जरिए चोट करें, अपनी वोट का इस्तेमाल करके अपने गुस्से को निकालिए. पर लेकिन फिजिकल चोट करना मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी में राइट नहीं है. डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता. तो लोगों में जो गुस्सा, उस गुस्से का ऐसा रिजल्ट है. पर लेकिन मैं इसकी निंदा करता हूँ. और दूसरा मेरी यही है कि अपने किसी के बीच में भी कोई गुस्सा हो सकता है, तो लोकतंत्र में गुस्सा निकालने के लिए अपनी, मैं समझता हूँ, बात रखने का एक प्लेटफॉर्म है, दैट इज फॉर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. आप अपनी वोट के जरिए उस सिस्टम के ऊपर चोट करिए, ना कि फिजिकल चोट करिए.
7: सर, आपने बात करी कि लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है. हमने ये भी देखा था कि अकाली दल के जो अभी चुनाव हुए थे इससे पहले इलेक्शंस में, अकाली दल की उतनी सीटें नहीं है जितना उन्होंने सोचा था कि आए, वो सरकार में नहीं आए. पर ये भी एक सवाल वो पूछते हैं और वो कहते हैं कि वो मानते हैं कि ये किसी आम आदमी, किसी व्यक्ति का काम नहीं है. ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो किसी इनसाइडर का जॉब है, जिसको पता था कि सुखबीर बादल का क्या स्केड्यूल होगा, वो कहाँ पे होंगे, कौन से गुरुद्वारे में जाएंगे, वो इसे एक साजिश कहते हैं.
8: देखिए, साजिश कहते हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए. जो भी साजिश के पीछे है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. मैं समझता हूँ सुखबीर सिंह बादल जी के अकाली दल के बीजेपी के साथ अच्छे संबंध है, वहां पे जिस मर्जी से एजेंसी से जांच करवा लें, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है. जब इनके ऊपर अमृतसर में हमला हुआ तो हमने विद इन समय रहते जांच करी और चालान जो है, चार्जशीट है, वो ऑनरेबल कोर्ट में हमने दाखिल किया. तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल चाहती है कि इसकी निरपक्ष जांच हो, इसकी इंडिपेंडेंट जांच हो, कोई भी आदमी करे. पर लेकिन ये फैक्ट है कि लोगों में गुस्सा है, पर गुस्सा निकालने का ये रास्ता सही नहीं है. अहिंसा जो है वो कभी किसी समस्या का समाधान नहीं है. आप अपनी वोट के जरिए, आप अपने इलेक्टोरल प्रोसेस के जरिए, आप अपने सिद्धांत के जरिए उस दूसरे सिद्धांत को मात दे सकते हैं. दूसरे किसी भी जो भी उन्होंने गलत काम किया उसको सजा देने के लिए और बहुत सारे मेथड है. आप वोट करिए, उनकी पार्टी के खिलाफ करिए, किसी भी पार्टी को करिए, ये उनका हक, हर एक नागरिक का अपना राइट है.
6: Moving on, let's now also tell you about the details of the attacker. The man accused of attacking Sukhbir Singh Badal has been identified. He is a 62-year-old man. His name is Jaspal Singh, a Nihang and a Sevadar at the Nanded Gurudwara, and he is now in police custody. Now, he has told the cops that he became a Nihang few years ago. The Nanded SP says that Jaspal, the attacker, had been working as a Sevadar in Nanded Gurudwara for the past 2 years. He holds a BCom and an LLB degree, but the bigger question is what drove him to attack the Akali Dal chief. Sources tell NDTV that during the questioning, Jaspal reportedly expressed anger against Badal over the drug menace in Punjab, over and even blaming him for turning the state into quote-unquote Urta Punjab. The motive is still under investigation and cops are questioning the attacker Jaspal Singh for further details. Moving on, the Bar Council of India has withdrawn its controversial order barring Nalsar's 2026 law graduates from enrolling as advocates. The development comes after the Supreme Court took up the matter.

0: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
1: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशंस थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
2: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
3: पुशअप चैलेंज किया जाए, 28, 29, 30।
4: तम्बे कैसा?